FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, पंडित कुमार गंधर्व, विडा सहस्रबुद्धे और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: एक विख्यात साहित्यकार ने कहा है कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। बात ध्यान देने लायक है। लोगों को यह समझ आते आते कि जीवन कितना मूल्यवान है, कि यदि जीवन में कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो प्रत्येक क्षण को अमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करना होगा। बहुत सारा समय हाथ से निकल चुका होता है, फिर जो समय बीत गया वह किसी उपाय से वापस नहीं आता, उसके लिए केवल पछताना ही हाथ में रह जाता है। तुलसीदास ने कहा है कि खेती सूख जाने के बाद वारिस होने से क्या लाभ, अर्थात समय पर चूक जाने के पश्चात फिर पश्चाताप करने से क्या होता है। किंतु इस कटु सत्य को जानते हुए भी हम काल रूपी इस अमूल्य धरोहर के प्रति यथेष्ट सावधान नहीं रहते। व्यक्ति का जीवन हो, समाज का जीवन हो, अथवा फिर राष्ट्र का जीवन, जहां समय की महिमा पहचानी जाती है वहां धन, वैभव, श्री और समृद्धि का पदार्पण होता है। खेतिहर किसान हो अथवा व्यापारी, समय का मूल्य सबके लिए अतुलनीय है। किसान ने यदि ठीक समय पर फसल न बोई, उसकी सिंचाई, निराई गुड़ाई तथा देखभाल न की, तो वह बाद में हाथ मलता रह जाएगा। इसी प्रकार व्यापारी हर क्षण अपने उद्योग धंधे के प्रति जागरूक रहकर ही लाभ कमाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, नेता, सैनिक तथा विद्यार्थी सबके जीवन एवं कार्य प्रत्येक क्षण के मूल्य को अतीव सजगता के साथ पहचानने की अपेक्षा रखते हैं। लापरवाही, प्रमाद और अकर्मण्यता आत्मविनाश के मार्ग हैं। दूसरी ओर समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। यद्यपि मनुष्य का जीवन अंतिम दम तक मूल्यवान है और यदि शारीरिक रूप से नहीं तो भी मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से उसकी सुरक्षा करना एवं उसे सक्रिय रखना हर मनुष्य का धर्म है, तथापि किशोरावस्था तक एवं विद्यार्थी जीवन में सावधानी का सबसे अधिक महत्व है। यही जीवन का निर्माण काल है। उपनिषद का वचन है तथा युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने उसे इस युग में बार बार दोहराया है कि उठो, जागो तथा श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। इस आह्वान का तात्पर्य है कि समय का मूल्य पहचानो, उसका एक क्षण भी प्रमाद में व्यर्थ मत गवाओ। जो समय हाथ से निकल जाएगा वह कदापि लौटकर आने वाला नहीं है। सुअवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दस्तक अवश्य देता है, किंतु बुद्धिमान लोग उस दस्तक को पहचान कर उसे पकड़ लेते हैं, जबकि मूर्ख उसे सोकर गंवा देते हैं। जीवन स्फूर्ति, उत्साह तथा कर्मठता का दूसरा नाम है। भारत को अनादिकाल से धर्म प्राण एवं देव दुर्लभ भूमि माना गया है, किंतु आज पश्चिम के वे देश जिन्हें हम भौतिकवादी तथा भोगवादी कहकर आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानते हैं, हमसे अनेक बातों में बहुत आगे निकल गए हैं। आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सैन्य सामर्थ्य की दृष्टि से पश्चिम आज वैभव के शिखर पर है, जबकि भारत की गणना गरीब, पिछड़े एवं नाना प्रकार के अभावों से ग्रस्त देशों में है। इसका प्रमुख कारण है हमारा आलसी और अकर्मण्य होना। पाश्चात्य लोग समय का मूल्य जानते हैं, इसीलिए वे इतनी उन्नति कर सके।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम। विषय था समय का महत्व। आलेख डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे का था और वाचन स्वर था पुष्पा शर्मा का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिससे स्वरों में परोया था सुरेश वाडेकर और साथियों ने। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे श्रोता। आज का विषय रहेगा शकरकंद की खेती और वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

बात बजकर 31 मिनट का समय रहेगा आपका अपना कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम, कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे गोवर्धन दास शर्मा की लिखी नौटंकी महारास, और प्रस्तुति होगी हरी बाबू कौशिक की। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ नगमे फिल्म संगीत के। 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम, आज का विषय रहेगा लंग्स, फेफड़े और श्वास संबंधी रोग। वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर हिमांशु गर्ग और आपसे भेंट करेंगे देवराज कृष्ण दीक्षित। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। 9:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। 9:45 पर आप सुनेंगे विशेष वार्ता पंकिम चंद चट्टोपाध्याय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व जयंती पर विशेष, वार्ताकार डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा होंगे। हमारे श्रोता सुनेंगे फरवाईसी फिल्म संगीत कार्यक्रम, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 11:30 पर आप पुनः आनंद लेंगे गैर फिल्मी भक्त संगीत कार्यक्रम अर्पण। 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम गीत पात और SMS, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम। 12:30 का समय होगा ब्रजलोक गीत कार्यक्रम का। आज कलाकार होंगे डोरीलाल गोला, संगत कलाकार हारमोनियम संगत रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी पर मनमोहन कौशिक और पर्कशन संगत होगी राहुल पाराशर की। बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे वनिता लोक कार्यक्रम बहनों के लिए। आज की चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस, साथ ही विशेष कार्यक्रम होगा युवाओं में नशा मुक्ति और सशक्त भारत। वार्ताकार होंगी दुर्गेश भास्कर। 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, शकरकंद से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि 4 से 5 माह तक तेज धूप वाले दिन, अच्छी वर्षा और गर्म रातें हों। जहाँ तक मिट्टी के चयन का सवाल है तो इसके लिए हल्की भूमि का ही चयन किया जाता है, जबकि बलुआर दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा देखा गया है कि ऊपर की सतह बलुई तथा नीचे की मिट्टी कुछ भारी दोमट हो तो ऐसी भूमि सबसे उत्तम होती है। शकरकंद के लिए भूमि की गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से कंद काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं और आकार में वे लंबे होते हैं। खुदाई के समय ऐसे कंदों के टूटने की संभावना अधिक रहती है। शकरकंद की रोपाई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है। अगेती रोपाई से उपज अधिक मिलती है। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो रोपाई जून में ही कर देनी चाहिए। रोपाई हमेशा मेड़ों पर करें और मेड़ों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची बना लें। मेड़ों पर 30 सेंटीमीटर के फासले से लताओं के टुकड़ों की रोपाई करें। इन लताओं के टुकड़ों की लंबाई 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। लताओं के टुकड़े काटते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 4 गांठें रहें। लताओं के अगले भाग के टुकड़े रोपने के लिए ठीक रहते हैं। अच्छा तो ये रहता

0: है कि प्रत्येक लता के नीचे का 30 से 40 सेंटीमीटर भाग काट करके फेंक दिया जाए तथा मध्य और आगे का भाग ही बोने के काम में लाया जाए। एक हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 40 से 50 हजार लता के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है और इसका वजन लगभग बैठता है 6 से 7 क्विंटल। रोपाई से पहले लताओं के टुकड़ों को उपचारित करना भी जरूरी होता है और इसके उपचारित करने के लिए एरिटान या सिरेसान का घोल बनाया जाता है और इस घोल में 8 से 10 मिनट तक इनको डुबोया जाता है। एरिटान या सिरेसान की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लिया जाता है। ऐसा उपचारित करके तभी लताओं की बुवाई की जानी चाहिए। ऐसा करने पर शकरकंद की फसल में काला सड़न रोग नहीं आ पाता है। टुकड़ों को मेड़ों पर खुरपी की सहायता से इस प्रकार लगाना चाहिए कि बीच की 2 गांठें जमीन में दब जाएं और दोनों किनारों की गांठें बाहर स्वतंत्र रहें। मिट्टी से लता को अच्छी प्रकार दबा देते हैं। रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई करना जरूरी है। इसकी खेती के लिए अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लताओं की वृद्धि अधिक होती है और कंद अवकिसित रह जाते हैं। इस प्रकार हल्की मिट्टियों में 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से देना लाभप्रद रहता है। सामान्य रूप से 1 हेक्टेयर शकरकंद की फसल के लिए 60 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की जाती है।
1: अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था शकरकंद की खेती और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने फिल्म लिया है आए दिन बाहर के, स्वर है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म सागर के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

0: ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे, जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं तो अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा

0: सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा।
1: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में

0: समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आनंद लीजिए अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र। राग अलैया बिलावल में है।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम वंदे ब्रज वसुंधराम ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें वंदन करें। और भैयाओ कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली भूली री भवन हो तो बाबरी भैरी भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन मुकहु न आवे वैन तन की दशा कछु और भैरी। ऐसो है कृष्ण नाम ऐसो है ब्रज माधुरी ऐसो है ब्रज माधुर्य। आज आपको सुनवा में गोवर्धन दास शर्मा की लिखियो यह है महाराज प्रस्तुति है हरि बाबू कौशिक की। तो भैया आनंद लियो या महाराज को
1: सुंदर सुहानो और पुनीत समय जानकी श्री आनंद कंद जगचंद के मन में 16 सहस्र गोपिकान के संग राज क्रीड़ा करवे की उत्कंठा थी। मुरली बजैया ने बांसुरी के मोहक स्वर छेड़ दिए दिन मधुर स्वरण को सुन के ब्रज गोपिकाएं घर द्वार पति पुत्र सबन को त्याग के वे सुख की दौरियाई अपने श्याम सुंदर के समीप घोर जंगल में अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण ने दिन के प्रेम की परीक्षा लेने की काढ़ी अनेकानेक तप प्रस्तुत की और दिन के घर लौट जाएगी की कही। पर ब्रजांगनाएं तो लाला कन्हैया पे अपनो सर्वस्व न्योछावर कर चुकी थी। श्याम सुंदर ने अपने प्रतिदिन की सच्ची निष्ठा देखी थी जिनकी मनोकामना पूरी करवे की काजी शरद पूर्णिमा की रात्रि को

अरे बंसी, मैंने तेरी बड़ी साल से सेवा करी है, अपनी मंदी मंदी पूछो तेरी प्यार करी है और अपने हाथों से तेरी चरण सेवा करी है। आज मेरी ही अभिलाष है कि मैं दिन दिन ब्रज गोकुल का नाम लूं, तू दिन को ही सिद्ध बनाए कहला।

कहा ये बज तो चिलाई नित काहे को बन उठ भाई यह कछु करी भली तुम नाही निज पति तज भाई बन माही आहा वे सौभाग्यशाली गोपिका है तुम भले आई भले आई भले आई मैं तुम्हारा कहाँ स्वागत सत्कार करूँ कहा ब्रज में कुशलता है तुम्हारे यहाँ अस में आने का कहाँ कारण है तुम्हें को समझाओ क्या जी एक तो भयंकर रात्रि और घोर जंगल जाक में स्त्री का रहना उचित ना है मैं तुमको समझाऊं।

0: श्याम सुंदर, हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं। सुनो श्याम सुंदर वरनायक, यह जन कहो नाय तुम नायक। ले ले नाम बुलायो सबको, धर्म सिखा रखाब हमको। हे प्यारे श्याम सुंदर, पहले तो आपने बंसे बजाए के सब गोपन को बुला ले लो, और अब ऐसे निष्ठुरता दिखाए रहे हो और सबन से कह रहे हो कि अपने घर को जाओ। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे ऐसे वचन को सुन के हमारा तो हृदय कटोई जा रहा है।
1: वेद पंथ निद्रियो तुम भारी, जाओ अजल घर देद सवारी। मात पिता पति सुन दुखते हैं, बहुरे तुमको प्राप्त दिखे हैं। हे ब्रजांगना।

पिता पति तुम खूब रेट बेचा सब ढूंढ रहे होंगे जालिए तुम भय पैदा मत करो तुम सब अपने अपने घर को जाओ।

0: सदासो हृदय हमारे। हे प्राण धन वल्लभ, हम तो वेद शास्त्र धर्म कर्म आदि कछु न जाने हैं। हम तो लोक लज्जा सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में ही अपने को धन्य समझे हैं। ये अपनो ज्ञान उपदेश महाराज आप अपने ही पास रखो, हम आपको छोड़ के कहीं न जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे महाराज।
1: हे ब्रज गोपियों, तुम वन की शोभा देख देख आई हो। देखो कैसा सुंदर वन है, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से ये वन कैसा मोहित रहा है। चंद्रमा अपने सोने कलावन से उदित होकर कैसा प्रकाश कर रहा है, और यमुना जी माँ तो देखो देखो कैसे सुंदर हिरणे लाले के बह रही हैं। तुमने सब कुछ देख लिया, अब अपने घर को जाओ।
2: सुनो श्याम सुंदर, मन बद कर्म तुम्हारी दासी, नर्म श्याम तुम्हारी प्यासी। कोट कहो अब भुवन न जाई, तुम तज हमारी और प्रिय नाही। ये प्राणेश्वर हम मन वचन कर्म से आपको ही सर्वस्व समझे हैं, और आपके प्रेम में अपना घर बार पति पुत्र माता पिता सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आए हैं। अब हम कौन से मुक्तों अपने घर को जाएं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
1: हाँ महाराज, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हे गोपियों, तुम वैसे तो भले आए, परंतु तुम्हारे घर बारे तुमको रेजवे के कारण सब व्याकुल हो रहे होंगे, यालिए तुम घर को जाओ। हे ब्रज गोपियों, तुम अपने हाथ से क्रोध के प्रतिबिंब में कहाँ देख रही हो। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम पृथ्वी से कह रहे हैं, हे पृथ्वी जी तुम फट जाओ, तुम सब कुछ अब तुमने समा जाए, परंतु अब हम लौट के घर को ना जाएंगे। महाराज हम लौट के घर को ना जाएंगे। हे गोपताओ, देखो पतिव्रता स्त्री को स्वप्न में ही ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। वेद शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, मैं तुमको समझाऊं।
3: समझाओ महाराज, समझाओ।
1: हे गोपियों, पतिव्रता स्त्री को यही धर्म है कि अपना पति रोगी हो, दरिद्री हो, कोढ़ी हो या मूर्ख हो, परंतु बाकी सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है।
0: हे प्राणनाथ, आज जो हमको धर्म को उपदेश दे रहे हो तो हमको कछु न सुहाए। पति सास नन की सेवा करनो तो मेड़दान को तो तोल वो है।
1: वो कैसा?
0: तो सुनो महाराज, कोई आदमी मेड़दान को तोल वो बैठो, वो एक को तोला तो एक भाग जाए, और बाको पकड़ने जाए तो वो फुदक जाए। तो ऐसे ही सास की सेवा करे तो जिठाने रिसाए जाए, और ससुर की सेवा करे तो पति देव रिसाए जाए। यानी ने हमने आपकी सेवा में ही सबकी सेवा मान लेनी है। जैसे पेड़ में पानी देते फूल पत्ता डारी सब हरी हो जाए, ऐसे ही आपकी सेवा कर बैठे तो सभी प्रसन्न हो जाए।
1: हे ब्रज गोपियों, देखो पतिव्रता स्त्री को एक दृष्टांत है, तो सब जने ध्यान पूर्वक सुनो।
3: सुनाओ महाराज।
1: हे ब्रज गोपियों सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की बड़ी प्रेम से सेवा करती। एक समय बाका पति हारियो थक्यो आयो, आए के अपनी स्त्री की जान से सिर भर के सो गया। थोड़ी दूर पर भी आंख बर रही होती, पास में ही बास्त्री का एक बालक खेल रहा होता। थोड़ी देर में बाका बालक खेलता आँख के पास जा पहुँचा।
3: ठीक है महाराज,
1: तो आप पतिव्रता स्त्री को बड़ी चिंता हुई।

0: जब आऊँ तो मेरा पतिव्र धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं जब आऊँ तो मेरा बालक जल के भस्म हो जाएगा। वो बड़े धर्म संकट में फंस गई। तो आप तो कहा रहे महाराज, तो आप पतिव्रता स्त्री ने अग्नि को साथ दिया तो जा तू सीतल ले जा। पतिव्रता के पतिव्रता स्त्री के साथ से अग्नि ऐसी रह गई जैसे चंदन की चीज। तो कुछ गोपियों ऐसे है पतिव्रता धर्म, जानिए तुम अपने घर को जाओ।
1: तो प्यारे श्याम सुंदर, एक दृष्टांत आपको हम सुनावे। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो ब्राह्मणी अपने पति की खुद सेवा क्यों करती। जब ब्राह्मण की सेवा कर लेती और दिन का मुख देख लेती तभी भोजन क्यों करती, बिना मुख देखे भोजन नहीं क्यों करती। एक दिना बाकी पतिदेव बोले, अरे ब्राह्मणी मैं परदेश को जाऊंगो। तो वो ब्राह्मणी बिचारी बोली, हे स्वामी मैं तो आपकी बिना सेवा किए भोजन नहीं क्यों करूं और अब मैं का करा करूंगी। तो बाकी पति बोले, देख मैं तो हूँ एक माटी की पटमा बनाए के दे जाऊंगो, तो बाकी सेवा क्यों करिए। तो ऐसा ही भया महाराज
0: बताओ।
1: बहुत दिन बीत जाए रहे थे, बाकी पति परदेश से घर को पधारे और दरवाजे पे ठाड़े रह के बोले, ब्राह्मणी किवाड़ खोल मैं आए गए हूँ। तो वो स्त्री भीतर अपने पद्मा की सेवा कर रही थी। तो श्याम सुंदर अब आप ही बताओ कि वो बिचारी स्त्री अपने पति की पद्मा की सेवा करे या अपने साचे पति के ताई किवाड़ खोले।
0: देखो पिया, देखो जब साचे पति आ गए तो झूठे पति की सेवा क्यों करे।
2: हे श्याम सुंदर, आपके मुख और आपके मुख से नियत, जब हम आप साचे पति मिल गए तो हमें झूठे पति का कहा काम, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
1: हाँ महाराज, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
0: हे गोपिया तुमको धन्य है, धन्य है, धन्य है। मेरे कारण तुमने माता पिता लोग लज्जा सबको त्याग के मुझे हित किया है, अम्मा को कहा आज्ञा है।
1: हे प्यारे श्याम सुंदर, अब आप सखियों को संग लेके रात विलास करो, जाते हमारा मनोरथ पूर्ण हो गए।
0: अच्छा गोपियों रात की तैयारी करो।

अभी आपने आनंद लियो गोवर्धन दास शर्मा की लिखी या महाराज को या के प्रस्तुत करता है हरि बाबू कौशिक। साधक को अपनी देह स्मृति को जो पूर्ण विस्मरण है जाए है और अगली अवस्था में वह दिव्य महाराज के अलौकिक रस को आस्वादन करे है आनंद की भूमि ब्रज भूमि और वहां श्याम सुंदर यमुना किनारे पंसी बजामते वह खूब आनंद बरस रहे है और सुनो या ब्रज लोकगीत को।

0: शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तोहे ब्रज चंदा बुलावे री, मान तज चल सजनी, राधे राधे नाम रटत कुंजन में, अरे क्यों जिया तरसावे री, और सूरदास चरणन को चीरो, निरख निरख बल जावे री। अभी मदन मोहन ब्रजवासी के गाए ब्रज लोकगीत के संग ही आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सब ब्रजवासियों को सेवक मयूर कौशिक की ओर सो और हमारे समस्त पदाधिकारी अधिकारियों की ओर सो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से

वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों

0: वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरास

0: ताऊ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी।
2: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम का ये पहला नगमा।
3: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10 बार

0: आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म उमराव जान में, और सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, सुष्मिता नरूला और साथियों को। फिल्म का नाम था आपकी खातिर। और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को। फिल्म का नाम है आशिकी।

0: लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के गाए फिल्म धर्मात्मा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम। विषय है लंग्स, फेफड़े और श्वास संबंधी रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग और आपसे भेंट कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित। छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात
1: चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टर्स के माध्यम से दिलवाते हैं, जिसे आप रोगों के बारे में जान सकें, उनसे बच सकें और समय से इलाज कराकर स्वस्थ रह सकें। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे फेफड़े और श्वास संबंधी रोगों के बारे में। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर हिमांशु गर्ग, वरिष्ठ फिजिशियन श्वास संबंधी रोग। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत।
6: नमस्कार जी, आप सब श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए और ये मौका देने के लिए धन्यवाद
5: जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो प्रश्न मेरा आपसे रहेगा श्रोताओं की ओर से, आजकल हम देख रहे हैं प्रदूषण काफी हमारे आसपास फैला हुआ है, और प्रदूषण जब इतनी मात्रा में है तो इससे आम जनता को, लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं, श्वास संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में

0: क्या कहेंगे?
1: ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम सब नोटिस कर रहे हैं ये, और ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो पोल्यूशन लेवल है और बहुत बढ़ गए हैं। और सिर्फ हम ये डस्ट, सिर्फ डस्ट ही नहीं, और हर तरह का पोल्यूशन, चाहे केमिकल्स हैं, चाहे हम घर के अंदर, आउटडोर तो ठीक है, इंडोर पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ गए हैं। और मेरे हिसाब से एक चिंता का विषय है,
0: जी
1: एक हमारी सोसाइटी के लिए। और ये आप देखते हैं कि जरा सा भी क्लाउडी हो जाता है, जिस दिन थोड़ा बादल हो जाते हैं तो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, और ये बहुत क्लियर हो जाता है, आंखों के सामने तक आ जाता है कि ये पोल्यूशन लेवल बढ़ गए। और ये जो आप देखिए, लंग्स जो है हर सांस में 500 ml एयर इनहेल करते हैं, और वो ये थोड़ा फिल्टरिंग मैकेनिज्म, जब वो पार्टिकल्स 2.5 माइक्रॉन से छोटे होते हैं, वो हमारे लंग के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं।
0: जी
1: तो ये ऐसा चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है, और ये आने वाले समय में सांस के रोगों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कारण है कि हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बहुत एज लोगों में सांस की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और मेरे हिसाब से, जैसे आज आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपना शुगर का कंट्रोल कर लेंगे, आप अपनी डाइट पे आप कंट्रोल करेंगे ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, बट इसका क्या करेंगे आप इन्वायरमेंट पे कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि प्रदूषण की रोकथाम हम सबको मिलकर ही करनी है, क्योंकि इस प्रदूषण से हम श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित होते जा रहे हैं। रोगों से बचना है तो अपने आसपास प्रदूषण को रोकना ही होगा। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं श्रोताओं की ओर से करना चाहूंगा आपसे कि धूम्रपान की आदत लोगों को, बहुत से लोगों को होती है, खासतौर से देहाती इलाकों में, गाँवों में आज भी लोग धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं और इससे कौन कौन से श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं?
1: देखिए, अभी अपन ने पोल्यूशन की बात करी जो हमारे हाथ में नहीं है, एक ऐसी चीज है जो कि इन्वायरमेंट में है, बहुत सारी चीजों से है, लेकिन धूम्रपान तो हम खुद कर रहे हैं। धूम्रपान हम अपने फेफड़ों को खुद जहरीली हवा दे रहे हैं। और आज देखिए, आज मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं जिनकी आज उम्र 60 साल है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हमने ये धूम्रपान करना चालू, हमें नहीं मालूम था कि इसकी ये दिक्कत, उस समय तो फैशन हुआ करता था, तो हमने चालू कर दी, आदत पड़ गई, अब हम नहीं छोड़ पाते। जब मैं पर देखता हूँ 30-40 साल के यंगस्टर्स जब पी रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनको तो आज हमें बच्चे को मालूम है कि स्मोकिंग करना, जो है धूम्रपान करना, बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये देहात के कल्चर में ही है कि बैठोगे आप और या हुक्का पियोगे,
0: सबसे पहले
1: लोग सोचेंगे कि हुक्का सेफ है, लेकिन ये पूरा पता है हमें कि लंग कैंसर, COPD मतलब श्वास रोग हो जाना, जिस वजह से ये बहुत बढ़ती जा रही है। और ये आज, कभी ये 6th लार्जेस्ट किलर थी, आज ये 3rd लार्जेस्ट किलर है। तो हम जैसे एवरेज लाइफ स्पैन बात करें लोगों की, 70-80 साल हो गई है, इंडिया में भी काफी बेटर हो गई है, लेकिन जहां पे भी ये स्मोकिंग का प्रेवलेंस है, जैसे हरियाणा बेल्ट है, यूपी बेल्ट है, जहां पे है वहां पे लोगों की एज इस वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। और मैं कहूंगा कि ये तो एक सुसाइड करने वाली बात है ना, एनवायरनमेंट पे तो ठीक है, कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पर धूम्रपान हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम सोसाइटी में सिखाएं, लेकिन ये कोई नहीं होना चाहिए कि सरपंच और वो पंच का भी एक वो कल्चर है, गाँव का भी, टाउन का भी, वो उस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा हमें। और ये करने से एक आदमी की उम्र अगर 10 साल तक बढ़ सकती है अगर हम स्मोकिंग छोड़े, तो इससे बड़ी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता सोसाइटी के अंदर।
0: जी बिल्कुल, तो शुरुआत हम ही को करनी होगी, यानी ये जो कल्चर है धूम्रपान का, इसे हमें खुद ही छोड़ना होगा। डॉक्टर साहब, कई बार अस्थमा रोगी, सांस के रोगी जो होते हैं, उनको डॉक्टर्स इनहेलर की सलाह देते हैं, और इनहेलर लेने से रोगी ये समझने लगता है कि मैं अंतिम स्टेज में हूं, तो कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां इस विषय में रहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए?
1: बिल्कुल सही आपने, ये पेशेंट्स जब भी हम इनहेलर देते हैं, उनके मन में बड़े तरह के डाउट आ जाते हैं, कई बार तो वो उसी समय मना कर देते हैं, और कई बार वो जाके उनके साथ पड़ोस वाले उनको कह देते हैं कि भाई अब तो आपकी लास्ट स्टेज आ गई, ये मत लीजिए, इसकी आदत पड़ जाएगी, ये बहुत बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्म्स ने, अगर आपने देखा होगा, सारी तरह की फिल्में जब भी सीरियल बनते हैं उसमें इसी तरह का दर्शाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, साइंस ने जो तरक्की करी, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 20-30 साल में, ये सब उसके अगेंस्ट है। उसकी जगह मैं एक गोली देता हूं तो वो कहां जाती है? वो पेट में जाती है।
0: हाँ।
1: पेट से वो लिवर में जाती है और फिर वो लंग में जाती है। अगर 10 मिलीग्राम की गोली दे रही जा रही है तो लंग के अंदर वो जाएगी 1 मिलीग्राम
0: जी,
1: और वो सर में भी जाएगी, पैर में भी जाएगी, जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें दवाई की जरूरत है लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो वो इनहेलर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक तरीका है, एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जहां हम दवाई को डायरेक्टली लंग में पहुंचा सकते हैं और हमें और कहीं जरूरत नहीं है उसकी
0: जी।
1: तो आप देखोगे कि जो इनहेलर्स हैं उसमें दवाइयां माइक्रोग्राम में रहती है, सारी दवाई जो है कोई टैबलेट, कोई भी तरह की गोली माइक्रोग्राम में नहीं बनती। तो सबसे हल्की दवाई, सबसे हल्का तरीका दवाई देने का जो माध्यम है वो इनहेलर है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी दुखद बात है कि लोगों के

0: इसके अराउंड भ्रम बन गए, इसकी कोई एडिक्शन नहीं होती, छोटे बच्चों के लिए भी ये सेफ है और ये सबसे हल्का तरीका है और सबसे हल्की दवाई देने का यही माध्यम है।
1: जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तकनीक नई है, दवाएं देने का तरीका अलग है, यानी आपको दवाई डायरेक्ट जिस काम के लिए जरूरत है केवल वही उस अंग में प्रवेश करती है, अन्य अंगों में उसका प्रवेश
0: बिल्कुल
1: नहीं होता
0: बिल्कुल
1: है। श्रोताओं, इस बारे में कोई भी भ्रांति पालने की आवश्यकता नहीं है, इनहेलर लेना पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं क्षय रोग की यानी टीबी रोग की। सरकार भी इसके बारे में काफी सजग है, प्रचार प्रसार भी खूब होता है, दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन इसके इलाज में लोग लापरवाही करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से?
0: देखिए, ये अगर हम अपने हेल्थ गोल्स की बात करें तो पूरे दुनिया में हम एक एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक स्पॉट की तरह इमर्ज कर रहे हैं। जो टीबी का प्रेवलेंस है अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है,
1: जी
0: जितना जबकि बहुत सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं उसके बावजूद भी। तो कुछ इश्यूज हैं अभी भी। देखिए, ये चीज़ आपने देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आए अखबार
1: जी
0: में, अमिताभ बच्चन जी की भी आई कि भाई इसके बारे में बिल्कुल लापरवाही ना करिए। टीबी का इलाज सबसे पहले सब शुरुआत में किया जा सकता है,
1: जी
0: सबसे आसान शुरुआत में होता है। एक बार आपने गलती करी और दवाई छोड़ी तो दूसरी बार अगर आप इलाज करेंगे और मुश्किल हो जाएगा,
1: जी वहीं से शुरुआत फिर वहीं से
0: वहीं
1: करनी
0: से
1: होगी।
0: होती।
1: जी
0: और फिर उससे ज्यादा दवाई देनी पड़ती है,
1: जी
0: इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और फिर वो दवाई की जो है इफेक्टिविटी कम होती जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। तो
1: जी
0: ये शुरू में ही हम उसको वो करें। और आजकल बहुत सुविधाएं सरकार दे रही है, जैसे कि टेस्टिंग है। हम
1: जी
0: जैसे अभी भी मैं और मेरी प्रार्थना जनरल प्रैक्टिशनर्स फिजिशियंस को भी होगी, तो एक चीज जो इसमें है कि वो भी वही गाइडलाइन फॉलो करें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है।
1: जी
0: एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल की दवाई दें, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या डॉट्स माध्यम है, डॉट सेंटर है, वहां जाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हमारे सारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो हैं वो लग जाएंगे और काफी सारी दुनिया आप देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस पे विजय पा चुकी है और कोई और हम इसमें पीछे हैं। तो
1: जी
0: हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है और ये सब मिलके अगर हम करेंगे तब इसका समाधान होगा।
1: जी अस्थमा रोग एक ऐसा रोग बनता जा रहा है जो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ी उम्र के लोगों को भी ये परेशान कर रहा है, तो अस्थमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें आप। ये रोग कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और क्या क्या परहेज रखे जाएं जिससे ये रोग होने ही ना पाए?
0: देखिए, अस्थमा जरूर अब पॉपुलेशन के सारी पॉपुलेशन में बढ़ रहा है और ये अक्सर छोटी उम्र में छोटे बच्चों में होता है।
1: जी
0: छोटे बच्चों में देखिए, जब भी सांस की दिक्कत होती है, खांसी होती है, तो उस समय कह पाना पूरी तरह संभव नहीं होता कि ये अस्थमा है या ब्रोंकोलाइटिस है।
1: जी
0: ब्रोंकोलाइटिस मतलब उनके जो है जो सांस लेने की नलियां बहुत छोटी होती है, जरा सा भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो उनको वीजिंग होने लगती है जो कि अस्थमा की तरह लगती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको लाइफ टाइम अस्थमा होगा, लेकिन पेरेंट्स को बहुत एप्रिहेंशन हो जाती है, बच्चों को ये बहुत कॉमन है आजकल। इसके बड़े सारे कारण हैं, जैसे कुछ तो हमने पोल्यूशन लिंक्ड है, कुछ जेनेटिक्स है और कुछ हम आज उसको रिकॉग्नाइज भी ज़्यादा करें। तो इन कारणों से छोटे बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो अस्थमा ही है सारा, लेकिन उनका उसका इलाज, उसका उपचार अस्थमा की तरह ही किया जाता है। और वही इनहेलर से जो हमें लगता है परेशानी है, माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं जब उनको कोई डॉक्टर कह देता है कि आप बच्चे को अभी के लिए इनहेलर दे दीजिए, लेकिन आप उसमें बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वही एक एक हल्का तरीका है हल्की दवाई देने का बच्चों में बीमारी को रोकने का। जब बच्चे एडोलेसेंस होते हैं, जब 13-14 साल में जब एडोलेसेंस अचीव करते हैं, बड़े होते हैं, उस समय बहुत सारे बच्चे हैं जो अस्थमा में नहीं डेवलप करते और कुछ लोग होंगे जो अस्थमा में डेवलप करेंगे।
1: जी
0: तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए, हम सोचते हैं खाने पीने की चीज़, हम मुझे हर पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब खाने पीने का परहेज बताएं। खाने पीने की चीज़ों और अस्थमा का बहुत ज़्यादा लिंक नहीं, हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ कुछ खाने पीने की जो ठंडी चीज़ें होती है, फ्रिज की चीज़ें,
1: जी
0: उनके अलावा खाने की चीज़ों का बहुत कम इसमें लिंक्ड है।
1: यानी कुछ भी खाया जा
0: कुछ
1: सकता
0: भी
1: है।
0: खाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी इसमें बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई ट्रिगर है या आपको लगता है कुछ केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई इस तरह के ऑक्यूपेशन, उसको अवॉइड करें। डस्ट से अगर आपकी, जैसे आप किसी किसी दुकान है बिल्कुल सड़क पे है, तो
1: जी
0: उसमें थोड़ा अवॉइड करें। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, उसको इनहेलर का इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह माने। और अस्थमा आप समझिए, ओलंपिक्स में बहुत सारे
1: जी
0: एथलीट्स
1: जी
0: कम्पीट
1: जी
0: करते हैं जिनको अस्थमा है और उनको कुछ नहीं
1: जी
0: कहता।
1: यानी इस बात की पहचान कर लेनी चाहिए कि किस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी पहचान होना जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं, कई बार लोग रात को सोते समय खर्राटे लेते हैं, यानी स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, तो उससे भी कई बार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो इस बारे में आप थोड़ी सी सलाह दीजिए।
0: ये आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया। स्लीप एपनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है
1: जी।
0: हमें जैसे पता है डायबिटीज, उसी तरह की डायबिटीज ब्लड प्रेशर एक

0: क्रॉनिक डिजीज है, मतलब बहुत सारी आबादी को है, जो कि आप देखेंगे थकान रहती है दिन में आपको झपकी आ जाती है, ड्राइविंग करते करते भी नींद आ जाती है, उसका कारण नींद में छिपा है। अगर आपकी नींद एक यूनिटरी फिनोमेना नहीं, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है, लाइट डीप डीप स्लीप, अगर आपका सांस रुक रहा है तो आपका ब्रेन वो ऑर्केस्ट्रा डिस्टर्ब हो जाता है और आप लाइट रिलैक्सिंग स्लीप में नहीं पहुंच
1: जी
0: पाते और आपको फिर दिन भर वो नींद आती है। तो ये होता है सांस रुकने की वजह से, एपनिया, सांस का
1: जी
0: रुक जाना, जिससे ऑक्सीजन गिर जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का बढ़ जाता है। तो इसका बड़ा इजी उपचार है, आप अपने डॉक्टर से बात करें, स्लीप स्टडी हो सकती है, रात की नींद को ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसका आराम से इलाज हो सकता है और आपकी जिंदगी इसके अराउंड बदल सकती है।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ और हमारे श्रोताओं को आप सलाह देना चाहें जो बात हमारी और आपकी बातचीत में छूट रही हो।
0: मैं देखिए, वो सिर्फ एक मुद्दा जो हम डील करते हैं वो आईसीयू का, आईसीयू
1: जी
0: पेशेंट्स, हम बहुत सारे मरीज, जैसे अब जब सांस फेफड़े खराब हो जाते हैं उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, कई बार वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, चाहे वो निमोनिया की बात हो, तो उसको लेकर के मेरा ख्याल लोगों में बहुत भ्रम है
1: जी
0: और
1: घबरा जाते हैं बहुत जल्दी
0: ऐसा
1: लोग।
0: घबरा जाते हैं, लगता है अब एंड स्टेज आ गई, हमें तो वेंटिलेटर पर डालना ही नहीं चाहिए, शायद ये पेशेंट्स डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, जो भी उनके मन में ये ख्याल आता है। आई थिंक ये वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, जब भी इसकी जरूरत पड़े आप इसको मना ना करें, इसे डरे नहीं, और बहुत सारी लाइफ स्टोरीज वहीं से, दोबारा नया जीवन उसी वहीं से मिलता है, और आप अपने अच्छे से डॉक्टर से कम्युनिकेट करें और सिर्फ इसलिए पेशेंट के लिए दरवाजा ना बंद करें वेंटिलेटर का या आईसीयू का, कई बार इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है और ये लाइफ सेविंग होती है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर हिमांशु गर्ग, वरिष्ठ फिजिशियन, श्वास संबंधी रोग, और आपने श्वास संबंधी रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम, विषय था लंग्स, फेफड़े और श्वास संबंधी रोग। वार्ताकार थे डॉक्टर हिमांशु गर्ग, आपसे भेंट कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
3: करें योग रहे निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ के समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
2: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान,

0: इंडोनेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदि।
1: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
0: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला, स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दीघाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
2: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है।
3: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से स्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के दैनिक लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
5: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग दो में थी, अब एक में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौने दिए, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
4: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। जन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारम्भ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के

0: उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
1: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी, विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना, ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
1: दिन सर्दी के, रिकॉर्ड गर्मी के, उलट पुलट मौसम, पृथ्वी के तापमान में बहुत तेजी से हो रहा है इजाफा, इसलिए समझे तपती धरती के संकेत को। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम की अतिशयता, एक्सट्रीम वेदर इन दिनों कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं बर्फबारी तो कहीं बहुत गर्मी। तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। क्या कारण है, क्या बड़ी वजह है? जी हाँ, प्रकृति। प्रकृति में सब एक दूसरे से गुथे हैं, इसलिए गड़बड़ी को हम अलग नहीं कर सकते। पानी और बर्फ गिरती है तो वह पहले रुकती है और बर्फ के ऊपर आ खड़ी होती है, जो कि पहले के से जमा बर्फ होती है। एक तो बर्फ गिरने के मौसम में बर्फ ना गिरे और बारिश हो तो जमा बर्फ निचले इलाकों में बहकर चली जाएगी। केदारनाथ तबाही इसी का नमूना है। केदारनाथ तबाही के समय औसत से 200 गुना ज्यादा बारिश हुई थी। हिमालयी क्षेत्रों में भी धरती पर बढ़ रहे तापमान का असर महसूस किया जा रहा है। बेमौसम जंगलों में आग लग रही है। इन सब का एक ही कारण है, हम इंसान। जी हाँ, हम इंसान। दिन गर्मी के, कहीं रिकॉर्ड तौर गर्मी, वर्षा ऋतु में सूखे की मार, फसलों में लगा झुलसा रोग, बेमौसमी बीमारियां आदि। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है मानव द्वारा प्रकृति का निरंतर दोहन व शोषण हो रहा है। एक ओर मानव अपने तकनीकी ज्ञान व आविष्कारों के माध्यम से पृथ्वी की सीमा लांघकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, दूसरी ओर प्रदूषित वायु, दूषित जल, मृदा अपशिष्ट, ऊर्जा संकट, रेडियोधर्मी वेस्ट, प्रदूषण, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों अत्यधिक उपयोग, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, धूल धुआं, सिमटते गांव, पसरती ऊंची ऊंची बिल्डिंग और शहर, बढ़ते हुए शहर, जहर उगलती चिमनियां, शोरगुल, कोलाहल एवं वाहनों से त्रस्त सड़कें, जहरीली भूमि, सूखते जल स्रोत व सुकुड़ती हरियाली आज के परिवेश की कटु सच्चाइयां हैं। कहा जा रहा है कि आने वाला

0: समय विकट ग्लोबल वार्मिंग का है। आम जनता को इस संकट के प्रति सचेत करना समय की प्रमुख आवश्यकता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित रेडियो भी जलवायु परिवर्तन के प्रति, जन जन की भागीदारी के प्रति समय समय पर सचेत करते रहे हैं। पूर्वजों ने तो हमें विरासत में स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण दिया और हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब भी हमने छेड़छाड़ पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके विवेकपूर्ण उपयोग की तकनीक विकसित करनी होगी, तब ही साकार हो पाएगी विनाश रहित विकास की संकल्पना। सामान्यतया व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे अकेले के इको फ्रेंडली कार्य करने से वह राष्ट्र व विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की छोटी छोटी क्रियाएं ही प्रकृति व पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ रख सकती हैं। जैसे विभिन्न अवसरों पर हम वृक्षारोपण करें और आरोपित पौधों वृक्षों का पोषण करें, पानी के दुरुपयोग को रोकें, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज एवं उपयोग के प्रयास करें, जैसे धूम्र रहित चूल्हा एवं गोबर गैस प्लांट का उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश गांव व नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। गांवों शहरों का संपूर्ण मलबा वर्षा जल के साथ नदियों में आकर मिलता है। उद्योगों के अपशिष्ट भी नदियों में ही छोड़े जाते हैं। गंगा, यमुना व पावन माने जाने वाली अन्य नदियां भी अब पवित्रता की अंतिम सांसें ले रही हैं। समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों तथा तेल वाहक जहाजों के लीकेज द्वारा समुद्री जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो ये विकास किसके लिए है? आइए हम संकल्प करें कि जलवायु परिवर्तन को हानि पहुंचाने वाले घटकों को अपने छोटे छोटे प्रयासों से सफल बनाएं, तभी हम जलवायु परिवर्तन रुकावट को, उसके प्रति जन चेतना को जगा सकते हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।
2: सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था जलवायु परिवर्तन के प्रति जनचेतना। आलेख और वाचन माला भटनागर का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। मैं ये जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वे जो कहें सो करना, उसके काजी न बनना। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता, इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वो दृश्य भी देखा जिसमें वो अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे

0: पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं कभी थकता न था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, ये धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी हैं, वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था। फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं।
1: ये थे बापू के विचार, और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था आज्ञा पालन के संबंध में गांधी जी के विचार, और प्रस्तुति थी आगरा केंद्र की FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।

0: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष वार्ता। पंकिम चंद चट्टोपाध्याय व्यक्तित्व एवं कृतित्व जयंती पर विशेष। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा।
1: भारतीय साहित्य और राष्ट्रवादी चेतना के इतिहास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान उपन्यासकार ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारतीय चेतना के अग्रदूत, समाज चिंतक और राष्ट्रभक्ति की भावना को शब्द देने वाले युग निर्माता साहित्यकार भी थे। उनका साहित्य भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जनपद में नेहाटी के निकट कांठलपाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर थे। आप अत्यधिक भाग्यशाली और प्रारंभ से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आप विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातकों में शामिल रहे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद 22 वर्ष की आयु में ही आप ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर बने और फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। 1891 में जब आप सेवानिवृत्त हुए तो ब्रिटिश सरकार ने आपको राय बहादुर के साथ CIEE कंपनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से विभूषित किया। इस अवधि में आप स्वरूप से तो ब्रिटिश सरकार के मजिस्ट्रेट थे, लेकिन अंतर मन से राष्ट्र धर्म के पोषक युगांतरकारी साहित्यकार थे। सरकारी सेवा में रहते हुए आपने भारतीय समाज की हमें अनेक समस्याओं को निकट से देखा। सामाजिक विषमता, रूढ़ियां, विदेशी शासन का प्रभाव और जनता की पीड़ा ने आपके मन को गहराई से प्रभावित किया। यही अनुभव आगे चलकर आपके साहित्य में विविध रूप में अभिव्यक्त हुआ। आपने बंगला साहित्य में जो नव निर्माण का कार्य किया, उससे अन्य भारतीय भाषाएं भी लाभान्वित हुईं। आपका सर्वप्रथम लघु उपन्यास राजमोहन्स वाइफ है, जिसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आपकी लेखनी चर्चा में तब आई जब आपने बंगला में लेखन का श्री गणेश किया। आपके सर्वप्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी ने केवल बंगला में ही नहीं, अपितु भारत की समस्त भाषाओं में प्रथम सुभाषित उपन्यास होने का गौरव प्राप्त किया। बंकिम चंद्र का साहित्यिक जीवन कविता से प्रारंभ हुआ, किंतु आपको सर्वाधिक ख्याति उपन्यास के रूप में ही मिली। बंगला साहित्य में आधुनिक उपन्यास परंपरा के विकास का श्रेय मुख्यतः आपको ही दिया जाता है। आपने ऐसे समय में उपन्यास लेखन का श्री गणेश किया जब भारत

भाषाओं में यह विधा विकसित हो रही थी। आपने अपने लेखन के माध्यम से बंगला साहित्य को नई दिशा और नई ऊंचाई प्रदान की और एक प्रकार से नव निर्माण का कार्य किया, इसलिए आपको साहित्य सम्राट कहकर भी पुकारा जाने लगा। आपका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास से ने बंगला साहित्य में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। इसके बाद कपालकुंडला, मृणालिनी, इंदिरा जुगलांगुरी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर और कमलाकांतेर दफ्तर, राधा रानी, रजनी, कृष्णकांतेर विल, देवी चौधरानी, राज सिंह, आनंद मठ और सीताराम जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखते हुए बांग्ला साहित्य को संपन्न करते रहे। इन रचनाओं में प्रेम, इतिहास, सामाजिक जीवन, धर्म, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति जैसे विविध विषयों का सशक्त चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ आप वैष्णव मत के अनुयायी भी थे, जिसके फलस्वरूप आपके लेखन का एक आध्यात्मिक पक्ष भी उजागर होता है। आपने कृष्णचरित, धर्मतत्व, देवतत्व, अनुशीलन तत्व और श्री मद्भगवद गीता पर भाषा टीका भी लिखी। आपके अनुशीलन तत्व से प्रभावित होकर प्रमोदनाथ मिश्र ने एक अनुशीलन समिति का गठन भी किया। 1872 में आपने एक मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जिसने बंगाली साहित्य और जनमानस का दिग्दर्शन करने में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया। बंकिम चंद्र के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें मनोरंजन के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का संदेश भी निहित है। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय जीवन के आदर्शों को स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया। आपके साहित्य में नारी पात्र भी अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत हुए हैं। चौधरी देवरानी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक महिला संघर्ष, साहस और नेतृत्व की अद्भुत मिसाल बनकर उभरती है। यदि बंकिम चंद्र के कृतित्व की चर्चा हो और आनंद मठ का उल्लेख न हो तो वह अधूरी रहेगी। सन 1882 में प्रकाशित यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रचनाओं में से एक माना जाता है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसमें मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित किया गया है और देशभक्ति की भावना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। जिन लोगों को आनंद मठ में सांप्रदायिकता की बदबू आती है, उन्हें यह उपन्यास अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसी उपन्यास में सम्मिलित गीत वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान की। यह गीत केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों देशभक्तों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए संघर्ष किया। आज भी यह गीत भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रज्वलित करता है। बंकिम चंद्र केवल साहित्यिक कथाकार, उपन्यासकार ही नहीं थे बल्कि गहन चिंतक भी थे। उन्होंने धर्म, दर्शन और समाज से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण लेखन किया। आपकी कृतियां कृष्णचरित्र, धर्मतत्व तथा अन्य निबंधात्मक रचनाएं और उनके गंभीर चिंतन का परिचय देती हैं। आप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में गहरा विश्वास रखते थे। आपका मानना था कि राष्ट्र की उन्नति उसकी सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों के संरक्षण में निहित होती है। आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली, सरल और साहित्यिक गरिमा से युक्त थी। आपने बंगला गद्य को परिष्कृत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके साहित्य में भावनात्मक गहराई, कल्पनाशीलता, ऐतिहासिक दृष्टि और राष्ट्रीय भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।
यही कारण

0: कारण है कि आपको आधुनिक बंगला साहित्य का प्रमुख निर्माता माना जाता है। बंकिम चंद्र के साहित्य का प्रभाव केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, आपकी रचनाओं का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और पूरे देश में उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। आपकी विचारधारा ने अनेक साहित्यकारों, समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेताओं ने स्वीकार किया कि बंकिम चंद्र के साहित्य ने उनमें देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। आज जब हम वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के युग में जी रहे हैं, तब भी बंकिम चंद्र की प्रासंगिकता बनी हुई है। आपका साहित्य हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व समझने और नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। आपने साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज निर्माण और राष्ट्रीय जागरण का प्रभावी साधन भी बनाया। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ, किंतु आपकी रचनाएं आज भी जीवंत हैं। आपका व्यक्तित्व विद्वत्ता, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। वहीं आपका कृतित्व भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आपने अपनी लेखनी से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत की, वह आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती है। आप राजा मोहन राय की सुधारवादी सोच के अनुयायी थे। आपकी लेखनी ने गौरवमयी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को उकेरा है। आपने हिंदू समाज की कुप्रथाओं के प्रभावों का विरोध करते हुए एक प्रगतिशील समाज की स्थापना पर बल दिया। इसके साथ ही यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि आपका पाश्चात्य दर्शन विरोध पूर्णतया बहिष्कार का नहीं रहा, आप उसकी अच्छाइयों के हिमायती भी थे। आपकी सोच थी कि यदि कोई अच्छाई हमें पाश्चात्य दर्शन से भी प्राप्त होती है तो वह ग्रहण कर लेनी चाहिए, और यदि अपने में कोई कुप्रथा दृष्टिगोचर होती है तो वह परमावश्यक रूप से त्याज्य है। पाश्चात्य दर्शन की आलोचना के बावजूद आपने कभी ज्ञान का संकुचित विरोध नहीं किया। आपका दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज को पाश्चात्य संस्कृति के प्रति पूरी तरह समर्पित हुए बिना वाहन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रथा को अपनाना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय साहित्य के ऐसे सूर्य हैं जिनका प्रकाश समय के साथ और अधिक उज्ज्वल होता गया है। आपका जीवन और साहित्य हमें यह संदेश देता है कि शब्दों में समाज को बदलने और राष्ट्र को जागृत करने की अद्भुत शक्ति होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक कुशल साहित्यकार, चिंतक और राष्ट्रवादी विचारक थे, इसीलिए उन्हें साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व्यक्तित्व एवं कृतित्व जयंती पर विशेष। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लता मंगेशकर, उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बतें में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उदित नारायण, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म कहो ना प्यार है में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक को फिल्म फिजा में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। फिल्म संगीत का आनंद इस समय आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।

नारायण, अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है मैं। और आइए सुनते हैं कुमार सानू। अलका याग्निक को फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या।

भी आपने सुना, प्रीति, प्रशांत और पिंकी को। फिल्म का नाम था हर दिल जो प्यार करेगा। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है आखिर क्यों।

0: अच्छा भोसले और साथियों के गाए फिल्म आप तो ऐसे ना थे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्ते सर।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं गांव उस पार से वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, मिर्जी श्रोता मित्र।
0: वीरेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: ओ सर बढ़िया हो आप।
0: हम अच्छे हैं, आपके हाल चाल क्या हैं, आप बताएं।
1: हाँ सर बढ़िया है, बिहारी जी का आशीर्वाद है सर।
0: हाँ, आपका काम ठीक चल रहा है?
1: हाँ सर अच्छा चल रहा है
0: आज क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में?
1: सर जी। आजाद पितर का गाना है, घूंघट के पट ना खोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे। सर जी इनसे बात और कर लो थोड़ा।
2: हेलो सर, प्रणाम नमस्कार सारस्वत जी को।
0: नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। अपना परिचय तो दे दें आप।
2: सर मैं याद राम बोल रहा हूँ सर, आपका जाना पहचाना विजय रेडियो श्रोता मैं गांव उस पार से जी।
0: जी, आप भी इसी गाने को पसंद करते हैं क्या? तो
2: जी सर जी सर।
0: आप सभी के लिए सुनवाते हैं ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: नमस्कार सर, राधे जय श्री कृष्णा।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार
1: जी। और नरवानी हूँ जगह
0: नारवानी साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी सर। धन्यवाद सर। मौसम यहाँ बदल गया
0: अच्छा, खुशनुमा हो गया मौसम आपके यहाँ भी?
1: बिल्कुल बिल्कुल खुशनुमा हो गया है। 2-3 दिन से लगातार पानी पड़ रहा है आधा 1 घंटे के लिए।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो रात से ही कृपा हुई है प्रभु की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बाकी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कृपा होगी ना।
0: ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं, वैसे तो हर जगह विद्यमान हैं भगवान।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी जगह है।
0: जी,
1: इसलिए तो कहते हैं कि ये तो सत्य है कि भगवान
0: बिल्कुल सही बात है। आज क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: है। बदले हुए मौसम में सभी को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रखना चाहिए।
1: रहें, मस्त रहें, आकाशन मथुरा सुनते रहें।
0: जी, शुक्रिया शुक्रिया।
1: हाँ ये गाना सर, ये तो सत्य है कि भगवान है।
0: अच्छा, यही गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: अरे सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: हाँ मैं सोचा मैं बिना खुआ से भजन लाल बोल रहा था सर।
0: स्वागत है भजन लाल जी कार्यक्रम में।
1: और सर साफ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, हमारे
0: सब
1: यहाँ का सारी टीम ठीक है। चलो
0: सब बढ़िया है सर। आशीर्वाद है बड़ों का और प्रभु का।
1: यही बंसी वाली की कृपा बनी रहे सब कुछ होता।
0: आप ठीक है ना?
1: हाँ मैं ठीक हूँ सर।
0: जी, घर में सब लोग ठीक है?
1: हाँ घर में सब ठीक है सर। घर में हम अकेले रहते हैं सर, कोई और नहीं है,
0: अच्छा
1: सब इधर उधर ही रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अपने काम धाम
1: हाँ
0: पर।
1: हाँ
0: जी, आज भजन लाल जी क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में?
1: अरे मौसम बहुत बढ़िया है आज तो, उसी के अनुसार एक गाना सुनेंगे।
0: जी,
1: मेरी बेरी के बेर मत तो कोई कांटा लग जाए।
0: सुनवाते हैं भजन लाल जी आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और सारस्वत जी, कैसे हैं आप?
0: अरे हम तो अच्छे हैं सर, आप बताएं, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जबलपुर से आपका श्रोता अशोक सिंह।
0: स्वागत है आपका अशोक जी कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, आपका परिवार और आपके सब लोग कैसे हैं?
0: बस बढ़िया है, आप बताएं, आपके यहाँ सब ठीक हैं?
1: सब ठीक है। बारिश हो रही है यहाँ तो, खुल गया, परसों हुई थी बारिश
0: हाँ, रात से कुछ रिमझिम हो रही है आज हमारे यहाँ
1: जी। तो
0: जी, मौसम थोड़ा अच्छा है आज।
1: अच्छा है, तो मन लो हम भी मजा ले रहे हैं मौसम का।
0: अच्छे, मौसम का तो आनंद लेना ही चाहिए सर,
1: जी तो
0: ऐसे में क्या फरमाइश रहेगी बताइए।
1: कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में।
0: ठीक है सर, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर जी दिल से। हम
0: आपका भी

0: हेलो,
1: माननीय महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? काफी खूबसूरत सुहाना मौसम है मथुरा वृंदावन का।
0: जी, शारदा प्रसाद जी, आपका स्वागत करते हैं पहले कार्यक्रम में। और
1: जी, हृदय धन्यवाद।
0: हम बिल्कुल अच्छे हैं सर, आपकी स्वस्थता की कामना करते हैं।
1: जी, हृदय से धन्यवाद। मानवर, आज सुबह सुबह अच्छी खासी रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी, बड़ी बारिश हुई
0: जी
1: और
0: जी
1: ठंडी ठंडी हवाएं चली, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। लेकिन अब ये धूप निकलेगी ना तो उमस भरी गर्मी जबरदस्त हो जाएगी।
0: हाँ, ये तो है। बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो काफी तेज होती है,
1: जी, गर्मी
0: उमस करती है। फिर
1: ज्यादा बेचैन करती है।
0: आज क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में सर, बताएं।
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। गीत के बोल है, मालिक मेरे सबके होठों पे है तेरा नाम, तू सबका मालिक हम सब तेरे गुलाम। टाइटल सॉन्ग।
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
1: जी, हृदय धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: मैं गढ़ाई से देवी सिंह बोल रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: सर जी, काफी दिनों से नंबर लगा रहे हैं, आज नंबर लग पाया।
1: हाँ, प्रयास तो करना पड़ता है, इस समय लाइन थोड़ा व्यस्त रहती है। क्या हाल चाल है आपका देवी सिंह जी?
0: बढ़िया है जी सर, खेती
1: खेती बाड़ी का काम करते हैं आप?
0: बाड़ी है, दुकानदारी भी है। हाँ
1: अच्छा, काम अच्छा चल रहा है?
0: ठीक है सर, ठंडा मौसम है आज।
1: आज मौसम थोड़ा सुहावना है। आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
0: पुली नंबर में लमका गाना है, भेट की दुपहरी पैया पांव जले हुआ रहेगा।
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

लगान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे आशा भोसले और उदित नारायण और साथियों के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले बता दें श्रोताओं आपको कि आज दिन में 12 बजे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम बात करेंगे आपकी मुस्कुराहट की। जी हाँ, मुस्कुराहट दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है और आपकी मुस्कान किसको देखकर आती है और आपको मुस्कुराने की जो वजह है ना वो कई बार ढूंढनी नहीं पड़ती। तो बस बातें होंगी मुस्कान से भरी और ऐसे ही प्यारे प्यारे से गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। फ़ोन नंबर आपको पता है ना, 94-122-25-575 और कार्यक्रम का समय दिन में 12 बजे से। तो बस आपके व्हाट्सएप संदेश का हमें रहेगा बेसब्री से इंतज़ार कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म हम साथ साथ हैं से। इस गीत को स्वर दिए कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक के। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हमारा आज का विषय रहेगा जरा सी मुस्कान ढेर सारी खुशियां। जी हां श्रोताओं, इस विषय पर अपने व्हाट्सएप संदेश हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में समय आपको मालूम ही है, दिन में 12 बजे से, और फ़ोन नंबर वही है 94-122-25-575। तो आपके व्हाट्सएप संदेश का हम कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। फ़िलहाल सुनिए ये गीत।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें अब से कुछ ही देर में दिन में 12 बजे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम बात करेंगे इस विषय पर, जरा सी मुस्कान ढेर सारी खुशियाँ। जी हाँ श्रोताओं, एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, किसी के उदास चेहरे पर उम्मीद जगा सकती है और टूटे हुए मन को हिम्मत भी दे सकती है। तो आपकी ज़िंदगी में आखिरी बार किस व्यक्ति की मुस्कान ने आपका दिल खुश कर दिया? आपका जवाब हमें व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से मिलना ही चाहिए, क्योंकि मुस्कान तो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। तो बस हमारा फ़ोन नंबर 94-122-25-575 और बस आपसे कुछ ही देर में यानी दिन में 12 बजे से 12:30 के मध्य हम जुड़ेंगे आपके साथ कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में।

अमित त्रिवेदी के गाए इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आज का जो हमारा विषय है वो हमने आपको पहले बता ही दिया है। जी हाँ, आपने कभी सोचा है दोस्तों कि दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे सुंदर और सबसे अनमोल चीज़ क्या है? वो है हमारी मुस्कान। और हमारी क्या, जिसके भी चेहरे पर आपको मुस्कान दिख जाए तो बस आपका दिन बन जाता है। क्योंकि यहाँ तो ना खरीदारी करनी पड़ती है, ना ही इसे संभाल कर रखने के लिए आपको कोई तिजोरी चाहिए। फिर भी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, किसी के उदास चेहरे पर उम्मीद जगा सकती है और किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे सकती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमारा आज का विषय है, जरा सी मुस्कान ढेर सारी खुशियां। तो आज का जो सवाल है वो यही है कि आपकी जिंदगी में आखिरी बार किस व्यक्ति की मुस्कान ने आपका दिल खुश कर दिया? तो बस आपके व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और मैं भी बस कार्यक्रम में उन्हें शामिल करना आरंभ कर रही हूं। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं आपके SMS। ये SMS हमें आया है फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर और बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आप लिख रहे हैं कि आज के विषय पर खुशी मन की आंतरिक भावना है और बाहरी रूप से उसका प्रकटीकरण मुस्कान कहलाता है। मुस्कान चेहरे की वो सुंदर अवस्था है जिसमें बिना बोले खुशी, स्नेह और मित्रता से मिश्रित भावों का संप्रेषण होता है। मुस्कान को किसी धर्म, देश और भाषा की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। दुनिया भर में ये प्यार और स्वागत के प्रतीक के साथ ही कोमल स्नेह और स्वीकृति का परिचायक है। मुस्कान सिर्फ चेहरे का भाव ही नहीं होता, इससे मूड फ्रेश होने के साथ साथ तनाव भी कम होता है। मेडिकल साइंस ने भी माना है कि मुस्कुराने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अब आपने पूछा कि किस व्यक्ति को आखिरी बार आपने मतलब मुस्कुरान उसकी देखकर आपको खुशी मिली, तो आप लिखते हैं कि हर पल मुस्कुराने के प्रयास में रहता हूं, कभी कभी तो कुछ नहीं मिला तो खुद पर ही मुस्कुरा लेता हूं, बस कोशिश यही रहती है मुस्कुराहट बनावटी ना हो और उसमें उपहास छुपा हो। तो आइए खुल के मुस्कुराइए और जीवन के हर क्षण को खुशी में बदल डालिए। बस जी यही तो बात है मुस्कुराहट में कि हमारा जीवन बदल जाता है मुस्कुराने से। ये श्रोता हमारे साथ जो जुड़े हैं दरियापुर बावली महाराष्ट्र से, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शैरी वर्णो अकोला से हैं, अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर लिखते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं तो न केवल हमारा अपना मूड बेहतर होता है बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक और खुशनुमा बन जाता है। एक छोटी सी मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि वह किसी का भी दिन बना सकती है और बड़े से बड़ा तनाव कम कर सकती है और खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। बिल्कुल खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं और मुस्कान है ही एक ऐसी थेरेपी या ऐसी

खुशियों की जो चाबी है वो उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमती है। और ये हमारे श्रोता मोताला महाराष्ट्र से जुड़े हैं, विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार लिखते हैं, खुशियाँ किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे विचारों में बसती हैं। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना ही सच्ची खुशी का राज है। जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटता है उसकी झोली भी खुशियों से भर जाती है। संतोष और कृतज्ञता खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन नया मुस्कान के साथ में जिए, क्योंकि खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। बिल्कुल, खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। और ये SMS हमें एक बहुत प्यारा सा SMS आया है, लिखने वाले हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा। लिखते हैं, मेरे बच्चे की पहली मुस्कान ने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं बहुत खुश हुआ उसे देखकर। बिल्कुल, वो अलग ही समय होता है जब आप अपने बच्चे को पहली बार देखते हैं। कोई आपका अंश जब इस धरती पर आता है, उसे देखना, उसे छूना और उसे देखकर मुस्कुराना एक अलग ही अनुभूति है। और देखिए, अपनी अनुभूति हमारे साथ में शेयर की है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख ने। आपके आने से ही हमें हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। और आप कभी कभी जब आती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने ना नाम मेरा गलत लिखा है, लक्ष्मी शर्मा, लक्ष्मी शर्मा नहीं, प्लीज़ इसे रश्मि शर्मा लिखिएगा आगे से, ठीक है? तो मैं और थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी आपके SMS पढ़ते वक्त। और ये SMS हमारे पास में आया है इन श्रोताओं का, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। मुस्कान वह अनमोल उपहार है जो बिना कुछ कहे दिलों को जीत लेती है। और एक सच्ची मुस्कान हर दर्द को हल्का और हर पल को खूबसूरत बना देती है। मेरी माँ की मुस्कान हर बच्चे की चाहत होती है। बिल्कुल, हर बच्चा चाहेगा उसकी माँ हमेशा मुस्कुराती रहे, क्योंकि मुस्कान नौछावर करती है एक माँ जब अपने बच्चों को पालन पोषण करके उन्हें बढ़ता हुआ देखती है। ऐसे ही जब माँ की बढ़ती हुई उम्र जब आगे बढ़ती जाए तो बच्चों को भी चाहिए कि कोशिश करें कि उनकी माँ हमेशा मुस्कुराती रहे। और ये SMS आया है गांधी चौक राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, बुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता और प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभू शाह, रजनी सिंह और सागर बाबू। लिखते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को आकर्षित करता है और मुस्कान चेहरे की रौनक होती है। बिल्कुल होती है जी। और अब हमारी ये श्रोता क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं ये हमारे श्रोता खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और उनके पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा जी, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। लिखते हैं, मुस्कान वो चीज़ है जो बिना कीमत के ही मिल जाती है सबको और इससे हमारा जीवन बदलता जाता है। बिल्कुल। और ये SMS हमारे पास आया है किनका, ओहो बड़ा खतरनाक मैसेज लिख दिया आपने तो, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा लिख रहे हैं, मुस्कुराने की इच्छा तो अब खत्म सी ही हो गई है। ना ना ना ना ना, ऐसा ना कीजिए जी। मुस्कुराना तो आप चाहे योगा के माध्यम से, आजकल तो देखिए हास्य योगा भी चल रहा है ना, तो उसमें आर्टिफिशियली लोग हंसते हैं, लेकिन जब आप हंसते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो धीरे धीरे आपको असल ज़िंदगी में हंसना सिखा देता है। तो बस हंसना मुस्कुराना अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो भी कोशिश कीजिए, झूठा ही सही लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। जब धीरे धीरे आप मुस्कुराएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वाकई में मुस्कुराहट भरे दिन लौट आएंगे। तो भाई मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। और ये क्या मानते हैं हमारे जो श्रोता हमें SMS भेज रहे हैं,

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। होस्ट रश्मि जी, एक छोटी सी मुस्कान जादू की तरह काम करती है, बिल्कुल करती है, और दूसरों को खुशियां देने के लिए सबसे पहले खुद मुस्कुराए। वही तो मैंने अभी कहा था भाई कि छोटी छोटी तारीफ करें, बिना स्वार्थ के मदद करें, और ये एक सकारात्मक ऊर्जा है जो पल भर में माहौल को खुशनुमा बना देती है। चलिए अभी फिलहाल खुशनुमा बनाने के लिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

जी हाँ, कार्यक्रम गीत तो बात और एसएमएस में बातें हो रही हैं आपकी मुस्कुराहट की। जी हाँ, एक एसएमएस हमारे साथ में जो हमारे इन श्रोताओं ने भेजा है, संतोष कुमार सोनार, सनी मुन्ना, बड़ू दादा, रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से लिखते हैं, हंसी तो एक थेरेपी होती है, मुझे हमेशा हंसने वाले लोग ही पसंद आते हैं और वो लोग मनमौजी होते हैं, उन्हें देखकर अपना दिन भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है। बिल्कुल, हैप्पी हैप्पी ही रहना चाहिए और हैप्पी हैप्पी होना ही चाहिए, दूसरों को भी हैप्पीनेस देते रहिए, बहाना कोई भी हो, और इससे अच्छा बहाना क्या मिलेगा कि आप बस मुस्कुरा दें। तो देखिए, एक एसएमएस ऐसा ही हमारे पास में आया है, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का, मुझे मोहम्मद रफी साहब के गीत सुनने से शाश्वत खुशी महसूस होती है, इसके साथ मुझे किसी एक बड़ी खुशी की ख्वाहिश नहीं है क्योंकि छोटी छोटी खुशियां मुझे जीवंत रखती हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी खुशियां जीवंत रखती हैं। और ये एसएमएस आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल का और भानु प्रकाश का। आपको पता है तुम्हारी और हमारी मुस्कान में फर्क क्या है, तुम खुश होकर मुस्कुराते हो और हम तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, क्या बात है। और ये एसएमएस हमारे पास में भेजा है, बुजुर्ग को सड़क पार कराने से जिंदगी के दुखों का अंत होता है, अजीत नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, छिदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगन कौर और उनकी लाडी पोती रौनक दीप लिखते हैं, ऊपर से झूठा हंसने वाला इंसान अगले जीवन में जहरीला नाक बनता है। भाई ये तो मैंने पहली बार सुना। और ये एसएमएस हमें भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मालिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने मजनू का टीला से, आप किसी को दुखी देखें तो थोड़ी सी खुशी से उससे बात कर लेंगे तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाएगी, तो आप समझे कि हमने उसका थोड़ा सा गम भुला दिया। आप किसी को दुखी देखें तो थोड़ी सी खुशी से उसके साथ में थोड़ा सा समय व्यतीत करें तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी थेरेपी है जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और जिसके साथ में आप थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं उसे भी अच्छा लगेगा। और ये एसएमएस आया है अंबाकगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान का, मुस्कुराहट इंसान के चेहरे का सबसे सुंदर पहचान है और ये बिना कुछ कहे दिल की बात कह देती है। एक सच्ची मुस्कान दुखी मन को सुकून देती है और रिश्तों में अपनापन बढ़ाती है। मुस्कुराने से जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए क्योंकि एक मुस्कान न केवल हमें खुश रखती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी की किरण बिखेर देती है। और ये एसएमएस हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी, लिखते हैं मुस्कान तो वो गहना है जो हर किसी के लिए पहनना जरूरी है और खुशी खुदा का नायाब तोहफा मुझे मिला है कि मैं हर पल मुस्कुराता रहता हूँ, गम में भी अगर हूं तो चेहरे पर मुस्कुराहट का ही कब्जा बना रहता है, हंसते खेलते रहना फितरत बन चुकी है मेरी, और मेरा बेटा कनाडा में है, जब वीडियो कॉल पर मुझसे शरारत करता है तो उस वक्त जो मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है चेहरे का नूर बढ़ जाता है। वाह वाह, क्या बात है, चेहरे का नूर बढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एसएमएस के साथ अपने मन की बातें हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर करते रहिए। ये एसएमएस आया है हमारा जो श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सदस्य, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, होस्ट रश्मि जी, हम हमेशा दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हैं, हर रोते हुए को हंसाना हमारा उद्देश्य रहता है।

है। जी बिल्कुल, ऐसा ही उद्देश्य हमेशा आपका बना रहे। और ये हमारे पास में SMS आया है इन श्रोताओं का। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से लिख रहे हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। मुस्कुराहट चाहे किसी की भी हो, वो मनमोहक, प्यारी और बहुत ही आकर्षक होती है। हंसी एक ऐसी चीज है जो बताती है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। किसी को खुशी या हंसी देने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में हर दम हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें, वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ऐसी ही खूबसूरत जिंदगी आप जिए। और हमारे कार्यक्रम को भी बहुत सारे श्रोता पसंद कर रहे हैं, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। झट से आपके नाम भी पढ़ देती हूँ। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें SMS कर रहे हैं, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना यश मंसूरी लिखते हैं, शानदार कार्यक्रम है और जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। अक्सर मेरी बेटियां मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। यानी आपको बेटियों को देखकर बहुत खुशी होती है। अब देखिए जी, मुस्कुराहट की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन हमारे ना कुछ श्रोता बड़े मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। भाई गलत बात है आपकी, अब मेरा नाम गलत गलत क्यों लिखते हैं? आपको मालूम है ना मेरा नाम क्या है? तो फिर कोई रेशमा लिखता है, कोई लक्ष्मी लिखता है। भाई मेरा नाम रश्मि है, रश्मि, RASHMI। तो आपका SMS मैं पढ़ देती हूँ। आप लिख रहे हैं कि मुझे मुस्कुराना बहुत पसंद है और मैं हमेशा अपने घर में हंसता हंसाता रहता हूँ, और इसीलिए मेरा घर का माहौल बड़ा खुशनुमा बना रहता है। मैं जहाँ अपने यार दोस्तों के बीच में होता हूँ तो वहाँ भी मेरे दोस्त कहते हैं, बस कर यार, बहुत हंसाता है तू। ये समय समय भेजा है सहारनपुर से मनोज, ट्विंकल और इनके परिवारजनों ने। और ये जो हमारे श्रोता हैं लिख रहे हैं, रेशमा दीदी जी नमस्कार। हमें हास्य कलाकार राजेश श्रीवास्तव, जॉनी वॉकर, मोहम्मद की फिल्म देखकर हमें बहुत हंसी आती है। और ये श्रोता हैं भाटापुरा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, शिव कुमार शर्मा और बेबी वैदेही और इनके सभी परिवारजन। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एक गीत इस बात पर।

और ऐसे ही मुस्कुराता सा एक SMS हमारे इन श्रोताओं ने भी हमें भेजा है। लिखने वाले श्रोता हैं, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, सुख हो या दुख हरदम खुश रहना चाहिए। मुस्कुराने से चेहरे का निखार बढ़ जाता है। मुस्कुराता चेहरा हर किसी को अपना सा लगता है और गुस्से को भी मोम बना देता है। बिल्कुल, और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने। आपका SMS तो हमने शामिल कर लिया, आप दोबारा SMS मत भेजिए। देखिए, एक बार SMS शामिल हो जाए तो दोबारा SMS मत भेजिए। लिखने वाले श्रोता हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश शर्मा। मुस्कुराहट इंसान के चेहरे का सबसे खूबसूरत गहना है और भावनाओं की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, और ये हमारे श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप, कंवल। लिखते हैं, मुस्कान आपके और मेरे लिए खुशी का प्रतीक है, इसका कोई शुल्क नहीं है, मुफ्त में दिया जाता है। यह थके हुए को सुकून देता है और उदास को प्रसन्न करता है। मुसीबत में फंसे लोगों को सांत्वना देता है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, अमीर हो या गरीब, भिखारी हो या चोर, यह किसी भी आस्था के सभी लोगों के लिए निशुल्क है। बिल्कुल, और भी हमारे काफ़ी सारे श्रोता इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और ये SMS है हमारे इन श्रोताओं का। रवि कुमार, राहुल, कस्बा बराड़, जिला अंबाला, हरियाणा से। खुशियां शोर नहीं करती, वो चाय के पहले घूंट में घुलती हैं, माँ की डांट में छुपी फिक्र में मिलती हैं और दोस्त की बेवजह वाले मैसेज में खिलखिलाती हैं। खुशी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार नहीं करती, वो तो बस एक पल है जो कहता है यहीं रुक जा। बारिश की बूंद खिड़की पर, पुराना गाना रेडियो पर या तुम्हारा अपना नाम किसी के मुँह से प्यार से सुनना, कमाने वाली चीज़ नहीं है, ये बांटने से बढ़ती हैं, संभालने से टिकती हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी ढूंढने निकलोगे तो भटक जाओगे, रुककर महसूस करोगे तो खुद तुम्हारे पास आएंगी।

जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और बस आपकी खुशियाँ ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहें, बस मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आरजे रश्मि शर्मा को आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने के लिए। तो अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डोरीलाल गोला के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत। संगत कलाकार हैं, हारमोनियम पर संगत की है रामेश्वर दयाल शर्मा ने, ढोलक पर संगत की है प्रोफेसर मिश्रा ने, सारंगी पर संगत की है मनमोहन कौशिक ने, और परकशन संगत पर हैं राहुल पाराशर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
6: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
8: आराम से मैडम।
3: क्या?
8: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
9: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
10: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: हमारी जनगणना हमारा विकास।
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
12: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं डोरीलाल गोला के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

0: जमाने की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदा

अब से कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा विशेष कार्यक्रम युवाओं में नशा मुक्ति और सशक्त भारत। प्रस्तुति दुर्गेश भास्कर की होगी। दिन में 1:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ संध्या 5:30 पर।

कार्यक्रम युववाणी में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे छत्रपति शाहूजी महाराज जयंती और मुहर्रम। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता मुहर्रम की अहमियत और पैगाम। विशेषज्ञ होंगे MZ खान।

संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण में आज चर्चा की जाएगी जैविक कीटनाशकों का उपयोग और लाभ इस विषय पर। साथ ही चर्चा का दूसरा विषय रहेगा प्राकृतिक खेती और खेत संरक्षण। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता बाजरा मक्का ज्वार की उन्नत प्रजातियां एवं बुवाई। वार्ताकार होंगे KL वर्मा और उनसे भेंट करेंगे OP सिंह। इसी कार्यक्रम में OB आधारित राल गांव के प्रगतिशील किसान से वीरेंद्र सिंह की बातचीत आप सुन सकते हैं। संध्या 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या वंदन। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे देशगान। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। नवरंग कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा प्रदेश दर्शन। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भगवान दास शर्मा का संतूर वादन। अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मध्य निषेध।

0: विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हैं नीतू सक्सेना।
2: वंदे

पाने का इरादा है। ना हार मानूंगी ना ही रुकूंगी, क्योंकि जीतना ही मेरा इरादा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत और नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों आप कैसी हैं? हम तो चाहते हैं हमारी बहनें हमेशा खुश रहें और मस्त रहें, क्योंकि बहनों हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के जरिए ही हम अपने जीवन में आने वाले अनेक परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। वैसे तो बहनों हम सभी को अपने स्वास्थ्य का महत्व अच्छी तरह पता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना जाने कितने लोग अपने को नशे की दलदल में फंसा देते हैं। नशा किसी के भी जीवन में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं देता है। नशे की लत एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। समाज में बढ़ती नशे की लत के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 26 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर सन 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति जागरूक करना है। नशा एक ऐसी दीमक है जिसमें पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। परिवार की खुशियां और परिवार की इमेज सब कुछ नष्ट होकर केवल हंसी के पात्र बन जाते हैं। बहनों नशे के कारण लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और अनेक अवैध काम करने लगते हैं, जिससे अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। बहनों इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टीवी, हृदय रोग आदि से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता फैलाना है। नशे की रोकथाम के बारे में जानकारी देना है। नशे की गिरफ्त में आए लोगों की मदद और इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो बहनों आज इसी विषय पर सुनवाते हैं आपको विशेष कार्यक्रम युवाओं में नशा मुक्ति और सशक्त भारत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दुर्गेश भास्कर।

जिंदगी की राह में उजालों का साथ हो, जिंदगी की राह में उजालों का साथ हो, हर दिल में उम्मीदों की नई बात हो, नशे की अंधेरी गलियों से बचकर रहें सभी, नशे की अंधेरी गलियों से बचकर रहें सभी, हर युवा के हाथ में सपनों की सौगात हो। नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह विशेष कार्यक्रम नशीली दवाइयों के

दुरुपयोग और उनकी अवैध तस्करी जैसे गंभीर विषय पर जो केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की चिंता का विषय है। आइए इसी पर आधारित सुनते हैं यह कहानी। ये कहानी भी कुछ इस तरह कहती है। ये कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक परिवार की है। राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा था। पढ़ाई में अच्छा, खेलों में आगे और अपने शिक्षकों का प्रिय छात्र। माँ अक्सर कहा करती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर परिवार और देश का नाम रोशन करेगा। समय बीतता गया। राहुल कॉलेज पहुंचा, नए दोस्त बने, नई दुनिया मिली। एक दिन कुछ दोस्तों ने उसे कहा, बस एक बार आजमा कर देखो, कुछ नहीं होगा। राहुल ने सोचा, एक बार में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वह एक बार धीरे धीरे आदत में बदल गया। जो लड़का कभी घर का सबसे चहेता था, वह अब परिवार से दूर रहने लगा। पढ़ाई छूटने लगी, व्यवहार बदलने लगा। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को क्या हो गया है। एक दिन माँ ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, बेटा क्या बात है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन अब तक नशा राहुल की जिंदगी में अपनी गहरी जगह बना चुका था। प्रिय श्रोताओं, राहुल की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जो नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और उनकी अवैध तस्करी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत संगति, एक गलत फैसला और जीवन की दिशा बदल सकती है। कहानी की तरह ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी नशे की कहानी बन गई है। महिलाओं और माताओं के लिए विशेष संदेश। बहनों और माताओं, बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका घर होता है और पहली शिक्षिका उसकी माँ। यदि हम अपने बच्चों को नशे और गलत संगति से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवार को जागरूक बनाना होगा। अपने बच्चों से प्रतिदिन बात कीजिए, उनके मित्रों को जानिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उन्हें समय दीजिए। यदि बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखाई दे, पढ़ाई में रुचि कम हो जाए, घर से दूरी बढ़ जाए या स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, तो ऐसे संकेतों को गंभीरता से लें। बच्चों को डांट से अधिक विश्वास और संवाद की आवश्यकता होती है। माँ की ममता ढाल बने तो हर संकट टल जाता है, उसकी सीख का एक दीपक जीवन भर जल जाता है।

0: दवाइयाँ मानव जीवन के लिए वरदान है, लेकिन जब इनका उपयोग चिकित्सकीय सलाह के बिना या नशे के उद्देश्य से किया जाता है, तो यही दवाइयाँ जीवन को अंधकार की ओर ले जा सकती हैं। आज अनेक युवा जिज्ञासा, गलत संगति, तनाव या सामाजिक दबाव के कारण नशीले पदार्थ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि परिवार की खुशियों को भी छीन लेती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा दुबे। कुछ लोग ये भी हैं कि जो ड्रग यूज करते हैं वो इसको फैला भी रहे हैं सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटीज में। वो जो यंग जनरेशन है हमारे, जो कॉलेजेस में है स्पेशली प्रोन है, तो उनको मोटिवेट करते हैं कि यू आप स्ट्रेस में हो, आपको ये लेना चाहिए। ड्रग अब्यूज एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता, जैसे हमने देखा, हमने डिस्कस किया है, बट ये रिलेशंस को भी खराब करता है, अपनी फैमिली रिलेशन, सोसाइटल रिलेशनशिप। और कुछ लोग इसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं और वो इलीगल एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज हम इसीलिए ये डे मना रहे हैं सो दैट हम अवेयरनेस कर सके कि ये एक बड़ी समस्या है एंड हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए सोसाइटी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ड्रग अब्यूज के जो अफेक्टेड लोग हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर किसी के रिलेशन में है कोई, अगर है या फ्रेंड सर्कल में, प्लीज काउंसिल करिए और उनका रिहैबिलिटेशन करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, सो दैट कि हम एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी में रह पाए और हमारी जनरेशन रह पाए जो कि ड्रग फ्री हो और हेल्दी। आज 26 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑन ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मना रहे हैं। ड्रग अब्यूज को सब्सटेंस अब्यूज भी कहा जाता है। ड्रग अब्यूज हम तब कहते हैं जब कोई ड्रग या कोई और सब्सटेंस बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है और बहुत समय के लिए लिया जाता है, जैसे कि नींद की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ हो गई, पेन किलर्स हो गए जिसमें कि मॉर्फिन हो गया, कैफीन और सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल का यूज करना। ड्रग अब्यूज से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ड्रग अब्यूज ना कि एक पर्सन को अफेक्ट करता है, ये फैमिलीज को अफेक्ट करता है, सोसाइटीज को अफेक्ट करता है। ड्रग अब्यूज से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ड्रग अब्यूज से किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसे चीजें याद रखने में डिफिकल्टी हो सकती है, या वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता है, उसे कंपन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ड्रग अब्यूज लीवर पे भी असर करता है, किडनी पे भी असर करता है। जो आईवी यूज करते हैं उन्हें ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन का खतरा होता है, जैसे एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस। ड्रग अब्यूज हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है इत्यादि वगैरह। ये तो हो गया कि एक इंसान पे ये क्या असर करता है, बट एक फैमिली लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे उसके जो रिलेशंस है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाता है, उसके कुछ डिसीजंस ऐसे होना शुरू हो जाते हैं कि वो नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है। इसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं।
0: नशीली दवाओं का सेवन और अवैध तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समाज की जड़ों को कमजोर करने वाली गतिविधि है। नशीले पदार्थों का कारोबार युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला है। इससे अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव और सामाजिक विघटन

बढ़ता है। ऐसे में जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम संदिग्ध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं और समाज में जागरूकता फैलाएं। अवैध तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ युवाओं तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे ऐसी लत में धकेल दिया जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे परिवार टूटते हैं, सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है और अपराध की कठिनाइयों में वृद्धि होती है। विशेष चिंता की बात यह है कि तस्करी का यह नेटवर्क अक्सर युवाओं और किशोरों को अपना शिकार बनाता है। आकर्षक वादों, गलत संगति और झूठी चमकदमक के माध्यम से उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सजग रहें। यदि कहीं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की जिम्मेदारी मिले तो उसकी सूचना संबंधित प्रशासनिक और कानूनी एजेंसियों तक पहुंचाना हमारा नागरिक कर्तव्य है। याद रखिए, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल कानून की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग शरीर और मस्तिष्क दोनों पर गंभीर प्रभाव डालता है। इससे स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और व्यक्ति गंभीर रोगों का शिकार भी हो सकता है। यदि परिवार को किसी सदस्य में नशे के लक्षण दिखाई दें, तो उसे छिपाने की जगह तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। समय पर उपचार और परिवार के सहयोग से व्यक्ति सामान्य जीवन में वापस लौट सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: नशा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सेहत और अपने रिश्ते, अपने सपने और अपनी पहचान तक खो सकता है। दुर्भाग्य से आज युवाओं के बीच नशे का आकर्षण बढ़ता दिखाई दे रहा है। कभी साथियों के दबाव में, कभी तनाव के कारण और कभी जिज्ञासा के चलते युवा इस राह पर कदम रख देते हैं। लेकिन याद रहे, नशे की शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका परिणाम अक्सर बहुत बड़ा और गंभीर होता है। इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर रूपा गोपाल।
1: देखिए, ड्रग्स को अगर हम डिफाइन करें

0: तो वो एक तरह की मेडिसिन या केमिकल है, ऐसा मेडिसिन है, ऐसा केमिकल है जो कि एक इंसान थोड़ी डोज में लेना शुरू करता है, हैबिचुएट होता है और फिर उसकी ऐसी आदत पड़ती है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता है और छोड़ने पर उसके शरीर पर और दुष्प्रभाव उसको दिखते हैं, जिससे एक वो एक साइकिल में फंस जाता है, नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है। तो सबसे पहला असर जो छोटी डोज का असर होता है वो एक प्लेजेंट असर होता है, यानी प्लेजेंट का मतलब है उसको अच्छा लगेगा, अच्छा इन द सेंस या तो उसको नींद नहीं आती है तो नींद आने लगेगी, उसको नींद आती है उसको जगना है रात भर तो वो जगेगा, उसको लेके उसको और तरह की जो एक फैंटेसी फीलिंग होती है, यानी कि बॉडी लाइट हो जाना, ब्रेन पे कोई भी स्ट्रेस नहीं रहना, इस तरह की अच्छी इफेक्ट आती है, लेकिन वो एक बड़े टेम्पररी फेज के लिए आती है। जब ये स्थिति हैबिचुएशन से एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तब ये स्थिति जो सिम्टम्स देना शुरू करती है वो बाकी ऑर्गन्स पे अफेक्ट डालना स्टार्ट कर चुकी होती है, जिसमें मेनली लिवर है, लंग्स हैं और आपका जो फूड पाइप है। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं इनके असर आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, इस हद तक हो जाते हैं कि आगे जाके अगर कॉन्स्टेंट यूज इसका रहे तो ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इंडियन सिनेरियो में लंग कैंसर है, क्योंकि यहाँ पर टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, निकोटीन स्मोकिंग और भी तरह के जो ड्रग्स अब्यूज हैं जो लीगली अलाउड नहीं है, उनसे भी ये कैंसर, और थोड़ी सी एज अगर पूरी 25-30 की तरफ हो तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक है आपका, और भी बहुत तरह की, इवन हड्डियां भी कमजोर होने लग जाती हैं, तो एक नहीं है पूरे पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ये ड्रग अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
1: नशीली दवाओं का दुरुपयोग शरीर और मस्तिष्क दोनों पर गंभीर प्रभाव डालता है, इससे स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीएम मवार से बातचीत के कुछ अंश। डॉक्टर साहब, कुछ लोग नशीली दवाओं के आदि हो जाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इस तरह के लोगों को इस आदत से छुटकारा कैसे दिलाया जाए?
2: मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1987 में एक सोच उपलब्ध कराई गई थी कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, इसके बारे में सोचें। ये एक थीम सरकार ने लागू की थी कि ऐसे लोगों के लिए जो कि ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए उन्होंने ये थीम जारी की कि स्वास्थ्य के बारे में सोचें कि आप ड्रग क्यों ले रहे हैं और इसके ड्रग का क्या दुरुपयोग है। और ये दिवस जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 26 जून को ये दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सके कि जो नशीली दवाएं हैं वो हमारे लिए कितना घातक होती है। चिकित्सा के रूप में जो दवाएं ली जाती है, जो कि हमारे शरीर पे कुछ दवाएं घातक भी होती है
3: जी,
2: के कुछ लोग जो नशीली दवाएं होती है उनका दुरुपयोग करते हैं। दवाएं हम भी लिखते हैं, डॉक्टर लोग दवाएं अवश्य लिखते हैं, कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुझे रात में नींद ही नहीं आती
3: जी।
2: तो हम लोग नींद के लिए नींद की गोलियां भी दवाएं लिखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उन दवाइयों को खाते खाते वे लोग बिना चिकित्सक की परामर्श के दवाइयां खाते रहते हैं और उन दवाइयों के कारण वो एडिक्ट हो जाते हैं कि अगर वो दवा उसके शरीर में खून में नहीं जाएगी तो वो अपने आप के शरीर को भटकाव महसूस करेगा और वो उस दवा को ढूंढता फिरता रहेगा कि मुझे कैसे करके वो दवा मिल जाए और मैं वापस जो है वो तरोताजा होता हूँ, लेकिन तरोताजा नहीं होता है वो और अपने शरीर को विनाश के कगार पे पहुंचा रहा है। तो हम एक चिकित्सक होने के नाते ये कहेंगे कि दवाइयों का, जो नशीली दवाइयों का दुरुपयोग न करें, क्योंकि नशीली दवाएं हमारे शरीर को खोखला करती है, हम दवाइयों के ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं, हम दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो दवाएं अगर न खाएं तो हम अपने शरीर को भी नहीं चला पाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस तरह की गोलियां एवं मादक पदार्थों से बचे रहने या बचने का क्या मेडिटेशन भी एक उपाय हो सकता है?
2: लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में ऐसे आपको ऐसी दुकानें मिली भी जहां बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, जो पेंटिंग करी मिलेगी कि यहाँ नशीली दवाओं का प्रभाव को हम खत्म करते हैं, खत्म करने के इस तरह की वो होते हैं। तो इसमें जो नशीली दवाओं में नशीली चीज, तो चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो आपके गांजा हो, चाहे वो आपके तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो, शराब भी तो एक नशीली चीज है, इन चीजों के कारण

0: निश्चित दुष्प्रभाव तो सभी में पड़ेंगे। और वो कहते हैं ना, ये कहावत होती है कि जैसा खाएगा वैसा ही गाएगा,
1: जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन,
0: वैसा होगा मन। तो मन, अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भगवान की तरफ से आकर्षित हो तो भगवान आपको ये जो आप जो एडिक्शन की बीमारी है, नशीली दवाओं का सेवन करने की आदत पड़ चुकी है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, भगवान के प्रति आपका समर्पण भावना होगी तो यह अवश्य छूटेगी।
1: आध्यात्मिक ओर की तरफ,
0: हाँ आध्यात्मिक सोच रखिए। अगर मथुरा में रह रहे हैं तो बिहारी जी के दर्शन अवश्य करिए और भगवान बिहारी जी आपका भला करेंगे।
2: नशे की मुक्ति संभव है, सही उपचार, परिवार के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति सामान्य जीवन में लौट सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति इस समस्या का सामना कर रहा है तो उसे उपचार और परामर्श के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज का सहयोग और परिवार का विश्वास उसके जीवन

0: से व्यक्ति सामान्य जीवन में लौट सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति इस समस्या का सामना कर रहा है तो उसे उपचार और परामर्श के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज का सहयोग और परिवार का विश्वास उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन देंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे, एक स्वस्थ सुरक्षित तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। उम्मीद का दीप हर दिल में जलाए रखना, उम्मीद का दीप हर दिल में जलाए रखना, बच्चों को संस्कारों से सजाए रखना, नशे की हर अंधेरी राह से बचाकर उन्हें सपनों का सुंदर आकाश दिखाए रखना।
1: बहनों, आप सुन रही थी विशेष कार्यक्रम युवाओं में नशा मुक्ति और सशक्त भारत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी दुर्गेश भास्कर। बहनों, आज इस्लाम धर्म का पवित्र त्योहार मोहर्रम है। मोहर्रम इस्लाम धर्म के एक नए साल का पहला महीना है। आज का दिन खुशी का नहीं माना जाता बल्कि त्याग, सब्र और न्याय का प्रतीक है, जो इंसानियत के लिए दी गई महान कुर्बानी के रूप में याद किया जाता है। इस महीने की पूरी कहानी पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत से जुड़ी हुई है। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में अन्याय के खिलाफ सच्चाई और धर्म की सबसे बड़ी कुर्बानी माना जाता है। बहनों, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आत्मविश्वास और हौसला बुलंद रहेगा तो किस्मत का दरवाजा कब तक बंद रहेगा। बहनों, इसी के साथ समय होता है कुछ हमारे घरेलू टिप्स का। बहनों, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम इतनी जल्दी बदलता है कि तबीयत खराब होते देर नहीं लगती, और ऐसे में हम लोग भी तो ऐसे हैं जो खाने से बाज नहीं आते, कुछ भी खा लेते हैं, अलग अलग वैरायटी खाते हैं, फिर क्या होता है हमारी पाचन समस्या हो जाती है। खाना खाने के बाद गर्मी के मौसम में खाना पचने की समस्या भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में बहनों, अगर हम किसी दिन हैवी खा लेते हैं या हमारे बच्चे जो हैं घर में जो चुटुर पुटुर उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है कि रात को जैसे सोने से पहले चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर काला नमक और जरा सी हींग, ये सब लेकर अगर हम पानी के साथ पी लें रात को सोते समय, तो यह हमारा हाजमा दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से बहनों, हम सौंफ का पानी भी पी सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो बहनों, इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम। अनुमति दीजिए नीतू को। नमस्कार।

अजय नचले। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे स्वर्थी सुनिधि चौहान और साथियों के। आइए सुनते हैं कृष थ्री का ये गीत। स्वर हैं अलीशा चिनाय और जुबीन गर्ग के।

आपने सुना शिल्पा राव को फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल।

0: है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य

0: और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIED द्वारा आयोजित कार्यक्रम उमंग।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत।
1: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
2: congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए,

0: मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड।

0: इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं।

0: 1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो।

0: प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
8: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
9: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
9: कि उस अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
6: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
9: हाँ। मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
10: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
11: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही एकदम सही।
10: वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
9: धूप से हाँ। इतना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
9: विटामिन डी।
6: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
10: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
6: हाँ बिल्कुल,
9: पेड़ों को खाना भी देता है।
6: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।

0: रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
0: हाँ।
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
0: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
0: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
0: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कई
0: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
4: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
0: डर जाती है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को अनुराग पांडे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेके आए हैं चर्चाएं। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती, मना रहे हैं हम मुहर्रम, और बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहे हैं। क्या क्या प्रासंगिकता है इन चीज़ों की, इन पर हम आज करेंगे आपसे चर्चा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्रम में आज छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती विषय को लेकर। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में घाटगे मराठा परिवार में हुआ था, और जय सिंह राव, माता का नाम राधाबाई था, उनके पिता का नाम जय सिंह राव। बात करें कि कोल्हापुर रियासत की रानी आनंदीबाई ने उन्हें गोद लिया और उन्हें कोल्हापुर का छत्रपति बनाया। उनका लालन पालन जो पोषण था, उदारवादी आधुनिक विचारों के वातावरण में हुआ था, जिससे क्या उनके अंदर जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी का जो भाव था वो बहुत गहरा था। उनको लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि समाज

का जो मूल जो ढांचा है उसमें परिवर्तन आए, लोग बराबरी के स्तर पर पहुँचें और हर व्यक्ति को एक पायदान पर हम पहुँचा सकें, इसके लिए उन्होंने काम किया। शिक्षा के प्रयास के लेकर उन्होंने बहुत काम किया। जो हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग था उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, प्रयास किया कि जिन बच्चों को आवास की दिक्कत है उनके लिए एक छात्रावास वहाँ बनाए जाएँ। साथ ही साथ जो हमारे अस्पृश्यता है, यानी कि जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उसका उन्होंने उस पर उन्होंने रोक लगाई, उसका प्रयास किया। साथ ही साथ ऐसा भी प्रयास किया कि जो उस समय जो कुरीतियाँ थीं समाज में, जैसे हम बाल विवाह कह सकते हैं या इस तरह की जो समाज बाल कल्याण और नारी कल्याण को लेकर सरल भाषा में समझें, तो इसके लिए बहुत काम किया उन्होंने। बाल कल्याण और नारी कल्याण को लेकर के समाज में शाहू जी महाराज महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और कह सकते हैं हम कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज से वो बहुत प्रभावित थे। और कहीं ना कहीं कहते हैं समाज में कोई जो महापुरुष होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेता है और कहीं ना कहीं ये चलते फिरते आप कह सकते हैं वैचारिक संस्थान हैं, पूरे के पूरे एक इंस्टीट्यूशन हैं। आप इनसे कोई ना कोई विचारों को समझ सकते हैं। तो जो महापुरुष हैं उनका जीवन, उनका चिंतन, उनकी जो जीवन शैली, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उसको अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तब समझ पाता है कि वो व्यक्ति अगर महान है, उसने समाज को लेकर इतना योगदान इस जीवन में दिया, तो उसके कारण क्या था कि उसने उस जो अपनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति उसे समझा। अक्सर हम ये प्रयास करते हैं कि चीज़ें हम तक बस अच्छी पहुँचें, हमारे जो अधिकार हैं वो हमें सबसे ज़्यादा मिल जाएं, और हमारे जब कर्तव्यों का जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें जी चुराते हैं या उसको अपने कर्तव्यों को अनदेखा करके चल ले जाते हैं। आप छोटी छोटी सी बातों को देखिए कि हम कितने दिनों से सुनते चले आ रहे हैं कि भाई पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है, वो हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रही है। छोटी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल है, और अब उसको आप देखते हैं कि लोग आज भी समाज में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, तो सबसे पहले प्लास्टिक की थैली का उस दुकानदार से मांग करते हैं। तो शासन प्रशासन या सरकार अगर किसी चीज़ की रोक लगाती है, लेकिन अगर आप जाकर व्यापारियों से, छोटे छोटे दुकानदारों से ऐसा आग्रह करते हैं कि थैला लेकर नहीं निकलते घर से, और फिर उनको अपनी व्यापार के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए आपको प्लास्टिक की थैली देनी पड़ती है, पॉलीथीन देनी पड़ती है, और धीरे धीरे कूड़े के ढेरों पर, आपको भी पता है कि पर्यावरण जो ज़मीन के अंदर जब हम कूड़े के रूप में इनका कोई प्रॉपर निस्तारण नहीं हो पाता, नालियों में ये जो जम जाती हैं और जिसके कारण अक्सर जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों तक जिस स्थिति में प्लास्टिक रहती है वो वैसे की वैसे ही रहती है, उसका कोई ज़मीन के अंदर भी उसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता, तो तब भी हम उसका अपना जीवन में उसका उपयोग करते हैं। कहने का आशय ये कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो हमें सिर्फ इन महापुरुषों की जब जयंती आती है तो उनका जो जीवन में समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति और पूरे के पूरे इस तरह से उनका जो योगदान है उसमें बहुत बड़ी सीख है, और उनकी इस तरह हमको लेना चाहिए कि उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के लिए दिया, बाल कल्याण के लिए दिया, नारी कल्याण के लिए दिया। शायद उस दौर में पर्यावरण की स्थिति बेहतर होगी, वरना हो सकता है कि उस दौर में वो लोग पर्यावरण के लिए भी चिंतनशील रहते। तो बात सिर्फ इतनी सी है, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत करेंगे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ। जी हाँ, ऐसी कई दवाई हैं, आप भी जानते हैं, जिनको कि कई बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो मरीज़ है उसको कुछ राहत मिले और फिर उस राहत से वो अपनी बीमारी से उबर पाए या उसको थोड़ी सी राहत मिले, तो वो अपने और इन चीज़ों का सहयोग लेकर वो अपने जो शरीर में जो उसको प्रॉब्लम हो रही हैं, जो समस्याएं उनसे वो उठ पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन सम जब इस तरह की जो दवाइयाँ जिनमें कुछ नशीला तत्व है या कुछ हम कह सकते हैं जिनको लेने से कहीं ना कहीं आपको सुस्ती सी आती है, नींद का सा अनुभव होता है, तो कहीं ना हमारी मानसिक जितनी दवाइयाँ होती हैं अधिकतर उसमें जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारी जो चिकित्सक है, हमारे डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि भाई इस क्वांटिटी की मात्रा इस व्यक्ति को दे सकते हैं ताकि इसको थोड़ा सा आराम मिले, ये नींद ले पाए या कुछ भी इस तरह चीज़ें हैं। लेकिन जब उनकी तस्करी होने लगती है या उनका अवैध या दुरुपयोग होने लगता है, तब निश्चित रूप से समाज के लिए ये बड़ा गंभीर एक समस्या के रूप में उभरती हैं सब चीज़ें। तो हमें प्रयास करना होगा

कि हम साथ ही साथ जो भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी देखें कि हम किस व्यक्ति को दे रहे हैं, डॉक्टर का कोई पर्चा हो, कोई इस तरह का प्रेस्क्रिप्शन हो, तभी इस तरह की दवाई वहाँ से दी जाए। साथ ही साथ जब भी हम कोई इलाज करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, ताकि हमारा इलाज तो हो लेकिन हमारी बॉडी पर उसका कोई साइड इफेक्ट न नज़र आए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बातें और भी लेते हैं कार्यक्रम में इस गीत का आनंद।

0: खालिक कायनात।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी। नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: और बात करते हैं कार्यक्रम में आपसे मुहर्रम को लेकर। जी हाँ, क्या इसकी अहमियत है, क्या इसका पैगाम है? तो हम कह सकते हैं हमारे मुस्लिम समाज का ये एक प्रमुख त्यौहार है और मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है। ये त्यौहार 10 दिन तक चलता है और मुहर्रम महीने के 10वें दिन को आशूरा कहते हैं। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना होता है। और बात करें कि मुहर्रम को न्याय के लिए, संघर्ष और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का ये प्रतीक है ये महीना, ये त्यौहार। तो मुहर्रम इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के याद दिलाता है, उनकी शहादत को याद दिलाता है। और हम इस दिन उनकी शहादत को याद करते हैं। इस घटना में हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। कई बातें हैं इस त्यौहार को लेकर, बस जो सार्थकता है वो ये कि समाज में जो न्याय के लिए, संघर्ष के लिए, उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं, उनकी उस शहादत को याद करते हैं। आइए सुनते हैं आज ये वार्ता, मुहर्रम की अहमियत और पैगाम। वार्ताकार हैं MZ खान।
0: खालिक कायनात ने अपनी कायनात को हसीन और जमील बनाने के लिए कहीं चांद सितारे सजाए, कहीं गुलबूटे लगाए, तो कहीं समंदर की अथाह गहराइयाँ और कहीं शोख व शरीर लहरें और कहीं फलक बोस पर्वतों की चोटियाँ कायम की। अपने गैज़ो गज़ब का इजहार उसने अपने ही अंदाज में किया। कहीं बारिश, कहीं बाढ़, कहीं मोहलिक बीमारियाँ, कहीं जलजले और कहीं कदम कदम पर खिलाफ उम्मीद मरहले, इस वहदहू ला शरीका लहू ने अपने रहम व करम का, अपनी मोहब्बत और शफक्क़त का, अपने इनाम व इकराम का इजहार भी अलग ही अंदाज में इंसान व हैवान, जानवरों, चरिंदों और परिंदों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया है कि बेसाख्ता मुझसे निकल जाता है, फबई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने परमपिता परमेश्वर की कौन सी अनुकंपा को झुठलाओगे। कुरान शरीफ और मुकद्दस गीता साफ अल्फाज में इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस सृजनहार ने, रब्बुल आलमीन ने, इस माबूद हकीकी ने समय समय पर अपने बंदों की रहनुमाई के लिए हादी, पथ प्रदर्शक हर देश और हर

काल में भेजे हैं। उसने इंसान को एक दीन इस्लाम दिया और उसकी सही तशरीह और तबलीग के लिए 1,84,000 रसूल भेजे, और सभी रसूलों ने वही प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सच्चाई और रास्तगोई का सबक इस दुनिया को समय समय पर पढ़ाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं, और अहमद मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले के आखिरी नबी हैं, क्योंकि उनके साथ दीन की तालीम पाया तकमील को पहुँच गई, अकमलतु लकुम दीनुकुम। इन पर नाजिल की हुई किताब वो नुस्खे कीमिया, मुकम्मल जाब्ता हयात है, इंसानियत के लिए दैवी विधान है और ताक़यामत रहेगा। इसी किताब में वो सब कुछ है, इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी है और काफ़ी रहेगा। रसूल करीम का सिलसिला ख़ानदान उनके साहबजादों से नहीं, बल्कि उनकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत से चला। मसलहत खुदावंदी को कौन समझा है और कौन समझ पाएगा? हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के दो लाल हज़रत हसन और हज़रत हुसैन नाना को बहुत प्यारे थे, और शायद लाड़ प्यार की अधिकता इसलिए भी थी कि अनकरीब उन पर ज़ुल्म व सितम की भी बहुतायत होने वाली थी। इमाम हसन यानी बड़े भाई साजिश का शिकार हुए, और इमाम हुसैन ने जाम शहादत नौश फरमाया यानी सैयद शहदा कहलाए। ये भी एक हकीकत है कि हर साल दुनिया भर के लाखों करोड़ों मुसलमान शहादत हुसैन के गम में रो रो कर आँखें सुजा लेते हैं, आंसुओं की नदियाँ बहा देते हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं जिसकी एक एक बात को इस तरह दोहराया जाता हो, जिसके वाकयात सुनने वाले के जिगर को छलनी करते चले जाते हों, और मजलिसों में आहों, सिसकियों और हिचकियों की दिल हिलाने वाली सदाएं सुनाई देती हों। ये वाकया इस्लामी तारीख का एक लहू लहू वाकया है। इट्स अ पेज इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, अ पेज रिटन इन ब्लड। ज़िक्र लहू का और तज़किरा शहादत का। शहादत भी किसकी? नबी के लाडले नवासे की, नबी की आँखों के तारे की, क़ुरतुल ऐन की, हुसैन की, उस हुसैन की जो इल्म अमल का पैकर था, उस हुसैन की जो सरकार दो आलम के कांधों पर सवारी करता था, उस हुसैन की जो बहादुरी में, सखावत में, इबादत में, रियाजत में, वजाहत में अपनी मिसाल आप था। आखिर उस क़ुरबानी की, इस शहादत की ज़रूरत क्या थी? शहादत कहते हैं गवाही देने को, और गवाही की ज़रूरत तब पेश आती है जब झूठ, जुल्म और बदअमालियाँ, बुरे कर्म सच्चाई, रहम और अच्छे कर्मों का दावा करने लगें। अब कौन बतलाएगा कि सच क्या है, दीन क्या है, सच्चाई यानी सदाकत किसे कहते हैं, दीन और ईमान का मर्तबा क्या है, और सिरात मुस्तकीम यानी सन्मार्ग किधर है? जाहिर है गवाही की उम्मीद उसी से की जाएगी जिसने दीन को, ईमान को, कुरान को और उसकी इल्मी और अमली शान को देखा है, समझा है। सदाकत, अमानत और इबादत के साए तले परवरिश पाई है, और जिसमें वो औसाफ, वो गुण इस तरह घुल मिल गए हों, रच बस गए हों जिस तरह फूल में खुशबू रची बसी हो रहती है। दुनिया इस्लाम पर एक ऐसा ही वक्त आया जब जुल्म ने अपना सर उठाया, खलीफे वक्त ने दीन और ईमान को अपनी मुट्ठी में लेना चाहा, जुल्म और सितम ने हुस्न मुरव्वत को जीतना चाहा, यजीद ने जुल्म का, बद्दयानती का बीड़ा उठाया, और हुसैन ने अपने नाना का, दीन का, इल्म का और वो सब मुसीबतें, रंजो अलम जो राह मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चलने वालों पर ढाए जाते हैं, बर्दाश्त किए। क्यों बर्दाश्त किए? क्योंकि उनकी गवाही देनी थी कि सच क्या है, झूठ क्या है, दीन क्या है, बेदीनी क्या है, यानी धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस गवाही देने में उन पर आँच आए, उनके अजीज़ व अकरबा यानी प्रियजनों की जान जाए,
मासूम

0: से प्यास से दम तोड़ दें या तीर का निशाना बने, ये सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन दीन हक पर आँच आए ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झूठ को सच नहीं कहा जा सकता, सर कटाया जा सकता है, सर झुकाया नहीं जा सकता। शाह अस्त हुसैन, शहनशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद दाद न दस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइलह अस्त हुसैन। आने वाली नस्लें रोएंगी, रोती रहेंगी, नाना की रूह तड़प उठेगी, शेर खुदा हजरत अली और वालिदा सैयद फातिमा की रूहें बेचैन हो जाएंगी। ठीक है, ये सब कबूल है, मगर बिनाए लाइलह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह मजबूत बनानी है। झूठ को आईना दिखाना है और हमेशा हमेशा के लिए बतला देना है कि झूठ झूठ है, सच सच है, हुसैन हुसैन है और हुसैन जिंदा है, यजीद सिर्फ मोर्चा जीतता है, सिर्फ मोर्चा, जंग हारता है। नेकी और बदी की जंग, इसमें जीत हमेशा नेकी की हुई है, सत्यमेव जयते। लेकिन क्या जंग खत्म हो गई? मालूम होता है जंग बदस्तूर जारी है। इस जंग में यजीद पर लानत हो रही है, इमाम हुसैन के लिए मजालिस मुनाकिद हो रही हैं, सलामों की बौछार है और ताक़यामत ऐसा ही होता रहेगा। हज़रत अली ने किताब व सुन्नत पर अमल किया, हज़रत हुसैन ने किताब व सुन्नत पर अमल किया और हज़रत हुसैन ने भी किताब सुन्नत पर अमल किया, लेकिन खलीफे वक्त अपने हाथ पर बैत भी चाहता था, ये हुसैन को मंजूर नहीं था। अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल के बाद किसी तीसरी चीज़ की, किसी और शख्सियत की कोई गुंजाइश नहीं। हुसैन का ऐलान, हुसैन किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल कब छोड़ने वाले थे? वाकयात से पता चलता है कि इमाम हुसैन ने खुद से जंग का ऐलान या आगाज़ नहीं किया, वो मदीना छोड़कर मक्का आ गए। वहाँ भी ज़्यादतियाँ कम न हुईं तो कूफा वालों के इसरार पर कूफा आ गए। वहाँ पर यजीद के कारिंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। यजीद काफिले ने दरियाए फरात के किनारे सरजमीन करबला पर हुसैनी काफिले को घेर लिया, पानी बंद कर दिया और मजबूर किया कि वो बातिल के आगे सर झुकाएं। बातिल के पास हज़ारों का लश्कर, फौज और सिपाह, खाने पीने की सब सहूलियतें, और यहाँ इमाम हुसैन, उनके 72 साथी, जिसमें दूध पीते बच्चे, नौम्र जवान और बेहद बूढ़े भी थे, पर खुदा परस्त हजरात हक का बोलबाला करने के लिए सफारत थे। यजीद चाहता था कि हुसैन अली मुकाम उसकी बदकिरदारी को फतवा दें और उसकी सियाह कारियों से सहयोग करें, मगर यह नामुमकिन था। हुसैन के ऊपर जान निछावर करने वाले शहीद होते रहे, भूखे प्यासे रहे, जाम शहादत नोश करते रहे, और आशूरा का वो दिन भी आया जब इमाम हुसैन के सर ने नेजे पर बुलंद होकर अपनी अबदी फतेह और हक की दायमी जीत का ऐलान कर दिया। दुश्मन ने खुशी के तबल बजाए, इमाम आली मुकाम और उनके साथियों के सर कटे हुए जिस्मों को घोड़ों ने पामाल किया, खेमे में लूटमार मच गई, मोहतरम ख्वातीन की बेहरमती की गई, जमीन हिल गई, आसमान कांप उठा, लेकिन बातिल का सर हमेशा हमेशा के लिए झुक गया और हक की आवाज़ बुलंद हो गई और हमेशा बुलंद रहेगी। हजरत इमाम हुसैन का नाम और काम आज भी जिंदा है, ताबिंदा है, और दुख दर्द की मारी हुई इंसानियत हमेशा उनकी शहादत से सबक लेती रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, मुहर्रम की अहमियत और पैगाम। वार्ताकार थे MZ खान। इसी के साथ आज का कार्यक्रम युवाणी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम को संपन्न करने की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। इसी के साथ कार्यक्रम को करते हैं यहीं संपन्न। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के

0: अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:15 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मृणालिनी दीक्षित, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा जैविक कीटनाशकों का उपयोग और लाभ। साथ ही चर्चा लेंगे, आप जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती और खेत संरक्षण के विषय पर चर्चा। साथ ही कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता जो बाजरा मक्का ज्वार की उन्नत प्रजातियां एवं बुवाई विषय पर रहेगी। केएल वर्मा से आज के विशेषज्ञ जो हैं केएल वर्मा, इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन। समय संध्या 6:45 और संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में आप लेंगे हास्य वार्ता का आनंद। वार्ताकार होंगे कोमल प्रसाद शर्मा। वार्ता बड़े पछताए बारात में जाएंगे। संध्या 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे। संध्या 7 बज

कर 31 मिनट पर, कार्यक्रम शाम सुहानी में, समय संध्या 7:31। जी हाँ, आप करेंगे हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412-25575। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता एक बार फिर से रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नवरंग। करेंगे व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9412225575। सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी नगमा नवरंग कार्यक्रम में। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रदेश दर्शन, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार होंगे भगवान दास शर्मा, आप सुनेंगे इनसे संतूर वादन, जो राग अमोगी कानड़ा में निबद्ध रहेगा, और तबले पर संगत करेंगे आपके साथ तोताराम शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को नालनी बहन की राम राम। भैया, खेती बाड़ी में प्रतिदिन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कीटनाशकन को, रासायनिक खादन को, जैविक खेती को, बहुत से अलग अलग किसान भी अपने अलग अलग तरीके से करें हैं, लेकिन भैया जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने से बहुत लाभ हो गए जाके आज हम चर्चा करेंगे। भैया, जैविक कीटनाशक पौधे, खनिजों और सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक से बने एक प्राकृतिक उत्पाद की तरह हुए, ये पर्यावरण, मिट्टी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए बिना फसलों को कीटन से बचावे हैं। भैया, जैसे को लाभ इतना है कि इनके उपयोगों से फसलों में कोई जहरीले अवशेष ना बने हैं, ना बचे हैं, और मित्र कीट जैसे मधुमक्खी है मिट्टी को बचा के रखे हैं, मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को नुकसान नहीं पहुँचावे। फिर सबसे बड़ी बात की आवे लागत में कमी। भैया, जो आजकल रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करवे से जो बहुत महंगे महंगे कीटनाशक आ रहे हैं उनसे बचाव हमारा रह सके जैविक कीटनाशकों के प्रयोग करवे पे लागत में कमी आवे, ये आसानी से घर पे बहुत कम खर्च में तैयार किया जा सके। जाको प्रयोग हुए जैसे नीम की पत्तियाँ, तेल का छिड़काव करके रस चूसने वाले जो कीड़े हुए सफ़ेद मक्खी, माहू, दीमक को दूर रखवे में प्रभावी रहे। दूध और हींग को मिश्रण हुए, एक बीघा खेत के काजे, एक लीटर कच्चा दूध, 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम गुड़, 1 ग्राम हींग को मिलाकर पानी में स्प्रे करवे थे मरोड़िया रोग वायरस से बचावे जावे। लहसुन और मिर्च को स्प्रे, लहसुन और तीखी मिर्च को पीस कर पानी में घोल कर इस्तेमाल करवे से कीड़े फसलन से दूर रहे हैं। प्राकृतिक फफूंद होए तो ब्यूबेरिया बेसियाना का प्रयोग करें। तो भैया, इन अगर हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें तो हमारे फसलों में माटी को स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, फसल उत्पादन अच्छा हो, और सबसे अच्छी बात कि हमारा भी स्वास्थ्य सही बना रहे। तो अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि जैविक

0: कीटनाशकन को प्रयोग हमें करना चाहिए। भैया आगे हम आज आपको जानकारी दे पाएंगे बाजरा मक्का ज्वार की जो उन्नत प्रजातियां हैं और उनकी बुवाई है जानकारी देंगे केएल वर्मा, इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: किसान भैया, आज की चौपाल में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी फसलों के बारे में जो दाना तो हमको देती हैं, साथ साथ उससे चारा भी हमको मिलता है। तो कहें कि आम के आम और गुठली के दाम, एक साथ दो चीज़ें हमको देती हैं। जिन किसान भाइयों के पास पशुपालन का जो काम करते हैं, साथ ही साथ सिंचाई के साधन कम हैं, तो वो इन फसलों को ले सकते हैं। इनमें सामान्यतः ज्वार, बाजरा और मक्का, ये ऐसी फसलें हैं जो कम सिंचाई में भी होती हैं और साथ ही साथ पशुपालन के लिए भी हमें एक सहारा देती हैं। आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ केएल वर्मा साहब हैं, जो हमारे पुराने विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, और उनसे ये जानेंगे कि ये जो फसलें हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी लाभदायक हैं। तो वर्मा साहब बताओ कुछ थोड़ी सी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए मथुरा या मथुरा के आसपास के जो जिले हैं
1: जी,
2: इनमें बाजरा की जो फसल है ये बहुतायत में होती है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो ये हमारा जो मथुरा है या आसपास के जो क्षेत्र हैं ये दक्षिण पश्चिम जोन चार में आते हैं, तो इनमें जो संतुलित वेराइटियाँ हैं चाहे वो किसी भी फसल की हों, बाजरा मक्का ज्वार की बात नहीं है, उनकी ही बुवाई करें। दूसरी बात, जो उर्वरक का प्रयोग करें वो प्रयोगशाला से मृदा नमूना टेस्ट कराने के बाद ही करें।
1: जी बहुत बढ़िया बात,
2: मेरा दो तो ये अनुरोध है। अब सबसे पहले बात, चूंकि यहाँ बहुतायत में बाजरा की खेती होती है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जो प्रजातियां यहाँ की संतुलित भी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं।
1: जी जी।
2: उसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि बाजरा में दो प्रकार की वैरायटी होती हैं, एक तो हाइब्रिड वैरायटी जिनको हम कहते हैं संकर जातियां, दूसरी संकुल कंपोजिट वैरायटी होती है। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट वैरायटी का फायदा यह है कि ये इसका जो दाना है वो खाने में बहुत अच्छा होता है और इसकी लंबाई, जो पेड़ की लंबाई है वो ज्यादा होती है, तो वो चार मतलब पशुओं के लिए जो करब बनती है, करब कहते हैं हम, वो भी बहुत आयत में होती है। तो कंपोजिट वैरायटियों में जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो ICTP 8203 और ये 70 से 75 यानी दो ढाई मतलब ढाई महीने के करीब, ढाई महीने से दो तीन दिन ज्यादा मान लीजिए, और आप ये पक के तैयार हो जाती है। तो अगर आप इसको जुलाई में बो देते हैं तो आपके अक्टूबर के एंड तक ये कट के बराबर हो जाएगी, तो खेत आपके लिए दोनों तरह से खाली है, पर्याप्त समय आलू के लिए भी है और पर्याप्त समय गेहूं के लिए भी है।
1: जी जी।
2: और इसकी जो जो इसकी जो पैदावार आती है वो 16 से लेकर 23 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आती है। इसी तरह दूसरी वेरायटी है WCC 75 है, ICM 155 है, RAJ 171 है, ये सभी वेरायटियां लगभग ढाई महीने से तीन महीने के बीच में तैयार हो जाती हैं और पैदावार लगभग लगभग में 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से आती है।
1: जी, जी।
2: और सूखा चारा जो है वो 70 क्विंटल से लेकर 80 क्विंटल 85 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से मिल जाती है। अब जहां तक संकर वेरायटियों की बात है
1: जी,
2: तो उसमें जो सबसे अच्छी वेरायटियां हैं वो है PUSA 322, PUSA 23, ICMH 451। ये वेरायटियां ऐसी हैं जो ढाई महीने से लेकर तीन महीने के बीच में पक्के तैयार होती हैं और इसमें जो पौधे की लंबाई है वो 6 से 7 फुट के करीब होती है। पैदावार बहुत अच्छी होती है इनकी, 20 से 23 क्विंटल के बीच में होती है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा लंबाई में कम होती है इसलिए इससे जो कर्म मिलती है हमारी उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, वो 40 और 55 क्विंटल के बीच में तैरती है। इस तरह जो वैरायटियां हैं, इसके अलावा PHI जो कंपनी है उसकी वैरायटी है 86M86, 85M86, कृष्णा की है 91-19, धान्या की है 78-82 और 77-92।
1: जी जी।
2: ये प्रमुख प्रजातियां हैं, इनमें सबसे पहले ध्यान ये रखें कि इसकी जो बुवाई का समय है वो जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर 10 दिसंबर तक कभी भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसमें जो कायदे में तो हमारे यहाँ जो फिर छटकमा विधि से मतलब बाजरा बोया जाता है, लेकिन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध दिया कि छटकमा विधि से न बोए, वो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब मेंटेन करें। अब ये कहेंगे साहब इसको करेंगे कैसे, तो भाई सीधी सीधी बात है, ट्रैक्टर में बीच का जो एक टाइन होता है, जो टांग होती है, उसको किसी तरह से रोक दीजिए, उसमें कोई चीज फंसा दीजिए तो उसमें बीच जाएगा नहीं, तो दूरी अपने आप मेंटेन हो जाएगी।
1: जी जी जी।
2: और जब ये थोड़ा घना हो जाए

0: जैसे ही ये 15-20 दिन की फसल हो जाए तब आप इसमें ये देख लें कि जहां जो ज्यादा मतलब
1: बीज गिर
0: घने
1: गए।
0: हाँ घने हो गए हों तो उन्हें थोड़ा बेगरा कर दें, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो बीज की मात्रा लगती है वो 4 से 5 किलो लगती है 4 बीघे पक्के में 1 हेक्टर में। और इसमें जो खाद की मात्रा है, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया कि प्रयोगशाला में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर प्रयोग करें, अगर नहीं कर पाए हैं तो संकर वैरायटी के लिए 80 नाइट्रोजन 40 फॉस्फोरस और 40 पोटास का प्रयोग करें, और देसी वैरायटियों में जो संकुल वैरायटी है उसमें 50 किलो नाइट्रोजन 25 किलो फॉस्फोरस 25 किलो पोटास की मात्रा प्रयोग करें।
1: जी, तो ये तो
0: तो
1: रही बाजरे
0: बाजरा की
1: की
0: बात
1: बात।
0: जी।
1: इसके अलावा जैसे आपका ज्वार है,
0: हाँ
1: मक्का है, तो पहले ज्वार की बता दें।
0: ज्वार की, ज्वार तो नहीं है, पहले मक्का की इसलिए बताई जाए कि ज्वार
1: जी
0: तो यहाँ हमारे लिए चारे के लिए करते हैं, दाने के लिए तो
1: जी
0: बहुत कम होती
1: दाने के
0: है।
1: लिए मक्का की बात हो
0: हाँ
1: रही।
0: तो
1: जी
0: मक्का में, मक्का के लिए जो प्रजाति है हमारी हाइब्रिड में तो है शंकर, गंगा 11, सरताज, HQM 5, डक्कन 107, मालवीय 290-95, JH 3469, प्रकाश, पूसा शंकर मक्का 5।
1: जी
0: इनमें जो मक्का गंगा 11 है, सरताज है, HQM PM 5 है, इनका जो पकने का टाइम है वो 100 से 110 दिन के करीब है, और पैदावार बहुत अच्छी है, 40 से 45 क्विंटल के करीब प्रति हेक्टर में आती है। इसके अलावा जो वैरायटी है हमारी जो कम दिन में, इससे भी कम दिन में पकती हैं, उनमें डकन 107 है, मालवीय है और JH 3469 है। ये जो वैरायटियां हैं ये 90 से 95 दिन में पक जाती हैं, क्योंकि जल्दी पकती हैं इसलिए पैदावार थोड़ी कम होती है,
1: कम हो
0: चालीस से
1: जाते हैं।
0: पैंतालीस क्विंटल आती है।
1: जी
0: इसी तरह प्रकाश और शंकर मक्का 5 ये 80 से 85 दिन में पक जाती हैं और 35 से 40 क्विंटल पैदावार इनकी आती है,
1: यानी जो कम दिनों में पकेगी उसकी
0: की
1: पैदावार
0: पैदावार
1: थोड़ी कम हो जाती है।
0: स्वाभाविक रूप
1: वो
0: से कम हो
1: तो
0: गए।
1: किसान भाइयों की जैसी मांग हो उस हिसाब से
0: हाँ जो
1: वैरायटी की दे
0: आगामी
1: सकते।
0: फसल का जो उनका प्रोग्राम हो
1: हाँ हाँ
0: तो उस हिसाब से इसमें से जो भी वैरायटी है उसको आप
1: तो
0: चुन सकते
1: फसल
0: हैं।
1: चक्र के हिसाब से वो ले
0: हाँ
1: सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: जी
0: जहाँ तक कंपोजिट वैरायटी हैं जो बहुत अच्छी हैं उस हिसाब से, तो उनमें प्रभात एक वैरायटी है जो 100 से 110 दिन में पकती है और पैदावार जो 40 से 45 क्विंटल में है, खाने में बहुत अच्छी है। इसी तरह से नवयोगी, पूजा कंपोजिट 2, श्वेता सफेद और नवीन ये 85 से 90 दिन में पकती हैं और इसकी पैदावार जो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टर है। इसी तरह आजाद उत्तम, प्रगति और गौरव ये 80 से 85 दिन में पकती हैं, क्योंकि इनका समय कम होता जाता है, पैदावार कम होती जाएगी, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टर होगी। तो इनमें जो दूसरी वेराइटियां हैं जैसे प्रो एग्रो की 306 है, बायो में 96-91-81 है, तो ये जो वेराइटी हैं इनको आप साधारण तरीके से अगली फसल का जो कार्यक्रम है आपका उसको देख के प्रयोग करें। और इसमें जो खाद खाद की जो मात्रा की बात है उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें जो खाद की मात्रा है वो हाइब्रिड में 120 और 60, यानी 120 नाइट्रोजन 60 फॉस्फोरस और 60 पोटास का प्रयोग करें। इसका जो बुवाई का समय है वो 15 मई से लेकर और 15 जून के बीच में है।
1: तो लगभग अब ये
0: हाँ
1: समय बिल्कुल।
0: बिल्कुल सही चल रहा है। और इसमें
1: हाँ
0: ध्यान ये रखें कि इसको पलेवा करके जरूर बोएं,
1: जी।
0: और बीज की जो मात्रा है इसके जो दाने हैं जो मतलब वैरायटी संकर वैरायटी है इसके तो 20 से 22 किलो पर हेक्टर लगेगा बीज, और जो हमारी जो दूसरी कंपोजिट वैरायटी है उसमें छोटे दाने जिसके हैं वो 16 से 20 क्विंटल के करीब लगेगा, और जो थोड़े दाने बड़े हैं वो 18 से 20 किलो पर हेक्टर के करीब हो जाएगा।
1: तो और कुल मिला के बात इसमें ही वही है कि भाई अब मिट्टी की और पानी की जांच करा
0: बिल्कुल
1: लें।
0: करा लें। दूसरी बात इसमें ध्यान ये रखें कि अगर पिछली साल उन्होंने मक्का की हो और उसमें अगर पत्तियों पर सफेद धब्बे बने हों तो ध्यान ये रखिए कि भैया इसमें जिंक की कमी है, तो बुवाई के समय जब आप खाद का प्रयोग करें तो उसमें 20 किलो जिंक सल्फर प्रति हेक्टर के हिसाब से जरूर प्रयोग कर लें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये
1: तो
0: विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है। अब रह गई बात हमारी अंतिम फसल
1: ज्वार
0: ज्वार।
1: की। जी
0: ज्वार हमारे यहाँ साधारण तरीके से चारे के लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड वगैरह में इसको अन्न के रूप में भी पैदा किया जाता है,
1: जल्दी बो दें कुछ बाद में, तो बाद की जो फसल रह जाएगी वो दाने के
0: दाने
1: रूप
0: के रूप में भी
1: में भी
0: प्रयोग की जा
1: प्रयोग
0: सकती
1: किया
0: है।
1: जा सकता है।
2: भैया अभी आप जानकारी ले रहे हैं KL वर्मा से, बाजरा मक्का ज्वार की उन्नत प्रजातियां और बुवाई, इनसे बातचीत कर रहे हैं OP सिंह। भैया देखो किसान भैया कहो जाए ना जाके पैर ना फटी बेवाई बोका जाने पीर पराई, तो बहुत से

0: खाली विशेषज्ञ द्वारा जानकारी ना आए, हमारे किसान भैया बहन भी ऐसे हैं जो अपने अनुभवन को हमसे साझा करें और एक दूसरे से बात करके कहो जाए ना कि लाभ भी मिले, तो आज हम आपको आगे जानकारी दे पाएंगे। राल गांव के कुछ प्रगतिशील किसान भैया से बातचीत कर रहे हैं बीरेन सिंह।
1: भैया देखो, आज हम आए हैं राल गांव में और यहाँ हमारे किसान भैया बैठे हुए हैं जी, बड़े उन्नतशील किसान हैं और अपनी खेती में अगली जो खरीफ की फसल है धान की पैदावार ले में, तो एक से एक अच्छे अनुभवी किसान बैठे हुए हैं, बयोर वृद्धे बड़े बूढ़े हमारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे, राम राम जी।
2: राम राम।
1: आपको का शुभ नाम है?
2: डूंगर सिंह।
1: अच्छा, कहाँ के निवासी हैं?
2: राल।
1: अच्छा, तो ये बताओ अब के आप जो है अपनी या खरीफ की फसल में कौन सी फसल करवे जा रहे हो?
2: धान की।
1: धान में कौन सा बीज लगाओगे अब के?
2: 1692।
1: 1692 तो 1692 और बीजन तो ज्यादा है बेका?
2: ऐसी बताओ, हमें सब अच्छी पैदावार है कि?
1: अच्छी पैदावार है। के बीघा करेंगे अब के धान?
2: हम तो थोड़ा सा करेंगे, 2 बीघा करियो।
1: 2 बीघे तक आया जाएगा। और खेती में क्या करोगे?
2: इतनी जमीन है।
1: अच्छा, थोड़ी छोटी जमीन है। अच्छा, तो फिर या को बीज ले आए आप?
2: ले आए।
1: बीज आपने पौध कर दी?
2: ना, डालेंगे।
1: तो पौध करवे की आपकी क्या प्रक्रिया, केस केस पौध करें जा बता दो।
2: बढ़िया तरह कमाए कि नहीं, क्यारी बनाई जाएगी? क्यारी बनाए, उसमें खाद वाल डाल के नहीं, जब हम बीज बखेर के नहीं पानी दे दिया जाएगा।
1: तो बीज पहले गरांगे पानी में? हाँ, सूखो ही बो देंगे?
2: गराव जाए वो।
1: गराव जाए वो। कितना को है जाए जब बोंगे?
2: 24 घंटा कुल्ला रह जाए तक।
1: कुल्ला रह जाए तो क्यारी में फिर पानी भर के सूखी पवेर के?
2: पानी भर के नहीं, जब पवेर जाए।
1: अच्छा, तो 2 बीघा आपको कितनी बड़ी क्यारी बनाओगे? अन्न आते के डग की, के हाथ की, के फलांग की?
2: 8-10 हाथ की डर जाएगी।
1: 8-10 हाथ की। ठीक, बहुत बड़ी है अभी तक। कई बार पानी दोगे वहाँ में?
2: 5-6 लग जाएंगे।
1: 5-6 बार पानी। खाद को कछु थोड़ा सा बुरका लगे
2: होगा? खाद को बुरका लगे।
1: अच्छा, पौध कितनी बड़ी है जब आप जो रुपाई का तैयार करोगे?
2: तो 1 बिलान कम से कम।
1: 1 बिलान है जाए, यानी कि पौधा डूबे नहीं पानी में। अच्छा, देखो दूसरे किसान हमारे पास बैठे हुए। राम राम जी।
3: राम राम साहब।
1: क्या शुभ नाम है आपको?
3: राजकुमार जी है।
1: तो राजकुमार जी, बताओ अब के आप खरीफ में कौन सी फसल करवे जा रहे हैं?
3: धान लगाऊंगा मैं तो पहली बार अपना।
1: कौन सा धान करोगे?
3: मैं लगाऊंगा 852।
1: 852 नया बीज चले हो?
3: नया चलो है।
1: तो जाम का पैदावार ज्यादा आएगा?
3: देखूंगा पैदावार में तो नया काज करूंगा, धान हो जाए कुछ का करूँ भैया, मैं पहली बार खेती कर रहा हूँ। तो।
1: अच्छा, मान आपको उद्देश्य ये है कि धान के तो धान आ जाएंगे और चारे के काज वाको जो पाल हो
3: वो आ जाए काम
1: में आ जाएगा। के बीघा खेती करोगे अब के?
3: 1 एकड़ है मुँह पे तो।
1: 1 एकड़ यानी 5 बीघा?
3: बड़ो बीघा है ये, 1.5-2 बीघा बोलते हैं 1 एकड़।
1: 1.5-2 बीघा या समय पे जो है बीज खाद तो आप ले आए या काजे?
3: हाँ, बीज ले आया हूँ।
1: अच्छा, बीज ले आये तो बोए दो बीज को ना है?
3: अभी नहीं, कल लगाऊंगा जो तुम मुझे बुलन ने जो।
1: अब एक चीज बताओ के आपने जो है गेहूं को भूसा रख लो वो पोहन को?
3: हाँ, रखो थोड़ो
1: तो। पाल को आप जो है जाए रखो पोहन के काजे तो जी भूसते अच्छो पड़ेगा कैसे?
3: खाने वाली खा जाए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया माल हो तो खा जाए, वैसे ना तो खामी ना सूंगे ना बजी बजी तो ऐसी होती है।
1: मतलब करब के संग कुटवाए के और या फिर अकेली बड़सी के संग कुटवाए तो ये चारे के रूप में काम लियो?
3: काम ले दूं बड़ी भाई।
1: बहुत बढ़िया, यानी चारे के मतलब थे आप जो है जा पैदावार ले रहे हैं। जी किसान बैठे हुए हमारे जोरे, राम राम जी।
4: राम राम जी।
1: आपको का शुभ नाम है?
4: श्याम सिंह है साहब।
1: गांव
4: राल है।
1: राल, तो खरीफ में आप कौन सी फसल करवे जा रहे हैं?
4: धान ही करवे जा रहे हैं साहब।
1: कौन सा धान करोगे अब के?
4: साहब 1692 करेंगे, हमने पिछले साल दूसरो करो।
1: हाँ,
4: बाम तकनाई।
1: तकनाई।
4: हाँ।
1: तो अब की जान में कछु अच्छी पैदावार है भी संभावना है?
4: हाँ, जाके सब बता रहे हैं बढ़िया हो तो जी।
1: अच्छा, तो केवी का खेत करोगे?
4: तो है 5-1 बीघे खेत।
1: अच्छा, तो यहाँ में एक सबंते हटके ये बताओ, मान लो आपने ये धान करो और या की जो जब पैदावार है जाएगी तो या को आप कहाँ बेच में जाओगे?
4: मथुरा मंडी ले जाए साहब।
1: कहाँ हिसाब मिल जाए या को बीघा के हिसाब से? के बीघा में कितनो बैठ जाए
4: साहब? तो जी 200 मनी बैठ रहो, ज्यादा ना बैठ रहो, 200 मनी 22 मनी।
1: अच्छा अच्छा, और रेट कितनो मिल जाए?
4: रेट इतने मिल जाए 23-24
1: क्विंटल। अच्छा अच्छा, तो अपने खावे काजू रख देंगे? कछु
4: खावे को थोड़ा बहुत रख लें।
1: रख लें, और पशुओं के काजे या को पार रख लें?
4: हाँ रख लेते,
1: नहीं तो हाथ से कटवा के थ्रेसर में निकलवा दें?
4: हाँ कछु हाथ से कटवा के थ्रेसर में कछु ऐसी।
1: अच्छा अच्छा, जब पैदावार आप करें मान लो खेत में घास रह गई

0: तो वा को निस्तारण आप केस करें,
1: कछु दवाई दे देते हैं, कछु रह जाए फिर नराबू करते हैं, ऐसे ही करेगा घास को।
0: आप बताओ राम राम जी।
2: ये पूछ रहे हैं कि पैदावार लेवे के काजे खाद की उपलब्धि हते कि ना है आपके
3: यहाँ? खाद था।
2: अच्छो, तो आपको जो है सरकारी जो कोऑपरेटिव है वाते खाद लेवे के काजे किसान आईडी बन रही है?
3: हाँ हते।
2: बनवा ली?
3: बनवा ली।
2: तो कोऑपरेटिव ते जो है खाद मिल जाए आपको?
3: अब मिल तो जाते पर अब जरूरत है आज। हाँ। अब मिल लो ना है।
2: अच्छा, अब ना है, मिल लो,
3: अब ना है,
2: अब उपलब्ध ना है।
3: हाँ।
2: तो एक चीज बताओ, अब कौन सी पैदा लेके जा रहे हो?
3: धान की है।
2: धान की लेंगे?
3: धान की।
2: अच्छा, एक बात ये बताओ कि सब लोग धान करते हैं, क्या कारण है? मतलब और जैसे मक्का भाई, तुम्हारी बाजरा भयो, बन भयो, अरहर भाई, ये पैदावार क्यों नहीं करते
3: भाई? देखो, बम्बे की खेती है, हील की खेती है।
2: अच्छा,
3: वहाँ में और चीज तुम करोगे तो होगी ना।
2: हाँ।
3: मक्का करेंगे घट जाएगी, बाजरा घट जाएगा।
2: हाँ।
3: ई कहती पहले जब छाता मिला तो गाओ, जब ई कहती खूब बनऊ होते।
2: हाँ।
3: सब सौदा होते।
2: अरे वर्षा आपके हिसाब से पहले से ज्यादा है रही है कम है रही है?
3: वर्षा को तो ऐसा हिसाब है, वर्षा तो जब ज्यादा होती जब पहले ई कहते गाय, अब तो पहले तो कम है रही है। फिर भी देखो कच्ची खेती तो है धान की, खेत धान की खेती है कच्ची।
2: हाँ।
3: इक्की पक्की।
2: हाँ।
3: बरसा है जाओ कर की है जाओ तो अपनी दर्द रह जाती।
2: बिल्कुल।
3: और जे अगर बरसा ए हर आएगो ना और पानी भर रहो धान में तो वो सब रस्सू हो जाएगा वहाँ में।
2: हाँ।
3: फिर किसान ना मिलो कच्चू।
2: बिल्कुल। नहीं तो एक चीज, ये हमारे ये किसान बैठे हुए हैं, आपने नाम बताओ अपना, पप्पू हैं राल गांव के, तो पहले तो बरसात कम है रही है, जब वो किसान जो है धान के पीछे पड़ रहो है, ये और फसल क्यों ना कर रहो?
4: झील के खेत है ऊंचे पे है और झील के खेत है, वो धान लगाएंगे तो वो बैस पैदा मर जाए, फिर हरी बार दूसरे की बात धान लगाने पर
2: हरी बार करनी पड़ रही है कि जो सब करें मक्का या बाजरा।
5: हाँ, हाँ, तो
4: है जाएगी, जाएगी।
2: हाँ, अब ये गांव गांव में है रो ऐसो।
4: हाँ।
2: अगर सब किसान भैया अगर सूत कर लें तो भाई पहले जो मक्का होती हार के हार, बाजरा होते हार के हार।
3: सरकारी मील खुलवा दे।
2: हाँ।
3: मील खुल जाए।
2: हाँ।
3: तो अपने आप ऑटोमेटिक बन और भी होने लग जाएंगे
2: गन्ना को।
3: हाँ।
2: यानी के बाकी गन्ना की पैदावार होना शुरू हो जाएगी।
3: हाँ। अपने आप ही जमीन बन जाएगी और पैदावार ही ज्यादा है वो।
2: हाँ। जबकि इतनी वर्षा ना है रही तो धान जबरदस्ती करना
3: पड़ रहा
2: है
3: और क्या करे,
2: पानी को इंतजाम करना पड़ रहा है।
3: पानी को इंतजाम तो।
2: अच्छा, पानी को आपके यहाँ इंतजाम काय को है? ट्यूबवेल है, कुआ है, नहरे कहा है?
6: बोर लगाना पड़ जाए कि बम्मा चल जाए।
2: अच्छा, बम्मा पानी आ जाए।
6: हाँ, आ जाए कबू जबू ना तो फिर बोरते पकाने पड़े
2: बोरते।
6: हाँ, गन्ना तो कर भी तैयार है आदमी, क्या करे?
2: अभी देखो एक महीना तो जाको है जून को।
6: हाँ, जून है
2: और फिर जुलाई में कोई जरूर नहीं आएगा, जल्दी बारिश आ जाए।
6: हाँ, कोई पता नहीं।
2: तो जब तक आपके धान लग जाएंगे मेरे ख्याल से जुलाई लग,
6: जुलाई में ही लग जाएंगे। हाँ।
2: अच्छा, पहले तो या कि जो पौधे जाए तैयार कर भी पानी चाहिए,
6: तैयार चाहिए
2: तो वाका जी इंजन थे।
6: हाँ, इंजन थे लगानी पड़ी,
2: तेल फूकना पड़े,
6: तेल फूकना पड़े।
2: और वाके बाद अगर धान लग गए और मेव नहीं पड़े
6: फिर क्या होगा? फिर पानी लगाना,
2: फिर पानी लगाना पड़े,
6: बम्मा ना
2: तेल फूकना पड़े,
6: फिर तेल फूकना पड़े।
2: जब तक बरसा ना आ रही बम्मा पानी ना आ रो,
6: ना आ रो, फिर इंजन चलेगा,
2: इंजन चलेगा,
6: फिर मेहनती लगाओ।
2: तो देखो किसान ने अपने आप ही घर की करी है, करिए ना करी, दे पानी दे पानी
6: पानी
2: और फिर बरसे पानी
6: पानी
2: और पानी बरसे पानी, फिर डोले मेड़ना पे
6: मेड़ने पे के बाद में
2: है जी। तो अब घर की तो है ना रही, घर की किसान ने करी है। तो भैया सबरे लोग मिलके अगर एक सूत कर लें कि भाई धाने आप कम करो और मक्का बाजरा
6: और गन्ना लगवा दो,
2: गन्ना की खेती करो। आप सब ते बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। राम राम सा
7: भैया। अभी आप सुन रहे राल गांव के प्रगतिशील किसान भैया की बातचीत, इनसे बातचीत कर रहे बीरेंद्र सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दे पा रहे हैं ऋषि शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे ऋषि शर्मा के समय जा लोकगीत को गलियन अयो रे। चलते चलते अपने भैयान को मौसम की जानकारी दे दें। मौसम विभाग के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कल के दिन हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। बिजली और तेज हवाओं के साथ रोशनी की संभावना भी है। जैले किसान भैयान को सलाह दी जावे कि उमस भरी गर्मी आगे रह सके तो अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें और उर्द मूंग परी और पकी हुई फसलन की कटाई और मड़ाई तथा खरीफ मक्का एवं सब्जियों की बुवाई के काजे जे मौसम बिल्कुल अनुकूल है। पशुओं को पेड़ के नीचे ना बांधें। पशुओं को सुबह शाम नहलाएं और छायादार स्थान पर रखें और पानी बराबर पिलाते रहें। इन्हीं जानकारी के साथ हमारो किसान वाणी ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

किसान भाई और बहनें, अभी आप सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मृणालिनी दीक्षित। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए भक्ति परक संगीत पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या वंदन कार्यक्रम में लेते हैं, सुनते हैं ये गीत।

दिल दे तो परवरदिगार कुछ इस मिजाज का दे, दिल दे तो परवरदिगार कुछ इस मिजाज का दे कि जो रंज की घड़ियां भी खुशियों में गुजार दे।

0: अभी आपने सुना फिल्म किसकी बीबी से ये गीत, एक और गीत सनम बेवफा फिल्म से अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर महेंद्र कपूर के स्वरों में अभी ये गीत। इसी के साथ आज का भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनने जा रहे हैं कोमल प्रसाद शर्मा से हास्य वार्ता बड़े पछताए बारात जाएंगे।
1: भैया हो, मैं

तुम्हें अपनी उम्र कहाँ बताऊँ, अब तो भगत्ती में पानी है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी बरातन के अनुभव संजोए हैं, अब तो बरात में जाइबे की इच्छा नहीं हुई। फिर लोग आगन के विशेष आग्रह पे जानो ही परे है, बरातन के कैसे कट अनुभव हुए जाकू आप जानो ही हो। भैया मैं तो अपवृत्ति सुनाए रहे हूँ, त्यारी तुम जानो। सहलग शुरू है गए और मेरे ढंगा बरात के निमंत्रण आए लगे, पर काऊ बरात में न गयो। कर्म की लागिन एक घनिष्ठ मित्र की बरात में जानो ही पर्यो। वह बरात में मोसु कहा बीतना बीती, बाकू आप सुन ले हो। बात तो दिनारी है गई है, पर आज ताऊ भूलो ना। भैया बरात के दिना नजदीक आए लगे और हमारे मोहड़े ते लार टपक हुई लगी। हमने बरात की तैयारी शुरू कर दी। सुनो हो बरात शहर में जा रही है, जाली अपनी शान दिखाईबे के ताई बजाज से उधार लेके हमने एक बहुत बढ़िया सूट बनवायो हो। चूंकि बरात पे अपनो रौब जाई ते जमे है, वैसे हम हमेशा ते वेशभूषा के नाम पे कुर्ता पायजामा के प्रेमी रहे। भैया हम बंठन के सज समर के मित्र के गांव जाए धमके, मित्र हमको देख के गदगद है गयो और हमारी जेट भर ली और हमू बरात में जाएवे की खुशी में फूले नाई समाये रहे। दूल्हा के ताई एक कार और बरात के ताई तैयार है एक बस। बस के ओरे धोरे देख के लक्की मेला हम है गए नर्वस। बराती हूँ बस में भरते जाए रहे, हमने पूरी बस में सरसरी सी निगाह घुमाई तो पता चले होगा कहूँ पाम टेकवे की जगह ना है। भैया को उतावलो अपन न दिखामते भये, हमने सिकते पाछे बस में चढ़वे को फैसलो कियो। जाते दरवाजे के ढंगा ठारे रह सके, पर जे दूरदर्शिता हमारे ताई महंगी साबित भई। ऐसो भयो कि जब ड्राइवर के केव प्रयास करवे पे हूँ बस चालू न भई तो कंडक्टर के विनम्र आग्रह पे समूह ठाड़े भई। पांच सात बरातिन की संग संग हमें बस को धक्का लगानो पड़ो। भैया बस चालू है कि अगारी को बड़ी तो हम सिगरे जने भाजते भये वहाँ में समाये गए। जैसे तैसे बस होले होले रेंगवे लगी। जब बस ने कछु चार पकड़ लई तो हमें निश्चिंत है कि स्थिति को निरीक्षण कियो। हमें अपनो हाथ ढूंढवे में परेशानी भई, चूंकि दस बारह हाथन के बीच में हमारो हाथ बाई तनिया फंसे हो जा तरिया कौरव सेना के बीच में चक्रव्यू में अभिमन्यु फंसे का हो। भैया हमने अगार पछाड़ दाएं बाएं नज़र घुमाए के देखे वो प्रयास कियो, जा मैंने का सफलता मिली। भीड़ के कारण सिर को दाएं बाएं घुमाएवे में परेशानी है रही, पर बस के दरवाजे पे ठाड़े है बेटे हमको इतेक राहत ही कि हमारो दम ना घुट रहे हो। भैया अब अगारी का अहवाल सुनो, इतको बस चले और बितकू रेत के भबूड़े उठे सो हमारी तो हुलियाई बदल गई और मोहड़े पे पाउडर की परत पे परत जमती चली गई। बढ़िया सूट है गए बदरंग, हमारे चेहरा को उतर गयो रंग। भैया इतेक में का भयो कचानचक झटका के संग बस ठाड़ी है गई। पता चलो कि बस ने अगारी बढ़वे थे इनकार कर दियो। बरातीन को भारी भरकम बोझ ढो सकवे में व डुबूड़े शरीर में हिम्मत नाई सो वाको को पुर्जा टूट गए। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे, उनके देखा देखी कछु बरातीन के संग हमू नीचे उतर आई। इतकू दिना डूबे जा रहे हो और बितकू बस सुनसान जंगल में ठाड़ी ही। भैया हम मन ही मन राधे रानी को याद कर रहे हैं कि हे राधे रानी तेने खूब कराई बरात और हमारे पेट में चूहा मार रहे लात। पर गोधन बाबा की ऐसी मेहर भई कि ड्राइवर कंडक्टर ने अंजर पंजर खोल खाल के ठोका पीटी कर कराए के कर लई कि बुझा ठिकाने पे सही सलामत पहुंच जाई और बस अगारी को बढ़ गई। भैया अब अगारी को अहवाल सुनो, शहर ते लगा भाई एक नगर आओ जहाँ बरात जानी। सो बस बारे ने शहर के ढिंगाई कह दई कि अब तुम अपनी बरात चढ़ाओ और मो दूसरी बरात डाननी है और हमको ऐसे छोड़ के चले गए हो जैसे कोई वैयर बानी अपनी सौत के छोरा को छोड़ के रफू चक्कर है जाए। भैया अब का भयो कि बरात माते चढ़नी सो बाजे बारे और लाइट बारे अपनी तैयारी करवे लगे और बराती अपने अपने मोहड़िन पे पानी के छींटा मार के बारन पे कंघा फड़ावे लगे।

0: मूं गालन पे थे और बान पे थे वह ब्रज रजकू छुड़ावे को प्रयास करवे लगे। रगड़ा खाए के गाल तो लाल पड़ गई, पर बारन में वो पाउडर ऐसो जम गयो जैसे होरी पे गुलाल जम जायो करे है। भैया आओ अब अगारी को अहवाल सुनो। बरात होले होले ऐसे चलेवे लगी मानो चींटी की चाल। हमारे पाँव भारी पड़वे लगे, आँखें में नींद की झोंकावे लगे, भूख के मारे चूहा कूदवे लगे। शरीर ऐसो शिथिल है गयो कि जिस दिशा अब धरती पर लोट पोट है वारे। खैर जैसे तैसे बरात छोरी वारे के दरवाजे पर पहुँच गई। भैयाओ छोरी वारे के यहाँ बफर सिस्टम हो सुमा पहुँचत खे बराती व बफर सिस्टम में ऐसे लपके जैसे अकाल पीड़ित लोग सहायता ते मिले वारे राशन की ओर लपके। भैयाओ हमने एक प्लेट और एक चम्मच उठाई और वहाँ में थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी, एक चम्मच पनीर, एक चम्मच दाल मखनी, एक रसगुल्ला और दो पूरी ले ली। तंदूरी रोटी न पे मारकाट मच रही सो एक कचौड़ी और ले ली। अब का देखते हैं कि प्लेट तो भर गई और बढ़िया सब्जी तो रह गई और कछु मिठाई और पकवानों रह गई। बिनकू देख देख के हमारे मोड़े थे लार निकस पड़ी। अगार पिछार देखो तो घरा तो बरात की हेर के हेर, न कछु लेवे के न कछु धरवे के। हमारा तो जी हाल है गयो कि नीचे को दम नीचे रह गो, ऊपर ले गो राम उड़ाए। भैया जैसे तैसे वह युद्ध क्षेत्र में थे एक ढिंगा आए सो देखो कहा कि दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई और पतो नाओ यानी कहका मिल गई वो। भैया भैंस पोहिन की जो सानी हो करे ऐसी सानी को हम खाए भी लगे और मन में जी सोच रहे कि सकल पदार्थ हैं जगमाई कर्म ही नरपावत नाहीं। सुबह सानी में न कोई स्वाद न सवाद और जिस सोचवे लगे कि और कछु ले लें पर वह रेला में हिम्मत नहीं पड़ी। पर्यटकों पकड़े पकड़े हाथ दुख भी लगे, हार के झूठी प्लेट टोकरी में डाल दई। पेट में तो आलनू ना पड़ो कहें कौन थे मैं सुने वारों को हम एक ढेंगा ठाड़े है के लोग लुगाइन को देख रहे। को कहू तो पर्यटकों बुर्ज की तरिया भर के आए रहे हो जैसे कहो भिकारी के ने दस घर मांगे हों। भैया इतेक में का भयो एक बैयरवानी तेज आवाज में कहवे लगी कि जो तो लुक्कन की बरात है मेरी 3000 रुपया की साड़ी की रेड़ मार दी। दूसरी बोली हमने तभी कही कि पढ़ी लिखी है मेरे पास छोरी को ऊ सन के गांव में मत भी आओ, तमीज तो सीख ही ना है, लगाए लाए टुप चले आई। भैया अब अगारी का अहवाल सुनो। घरात की कछु बैयरवानी हमारे सूट माओ देख के खिलखिला के हंस पड़ी सोई हमारी नज़र अपने सूट पर पड़ी। देखत कहाँ कि सूट पर वो चित्रकारी भई कि नामी ग्रामी चित्रकारू ऐसी चित्रकारी ना ही कर सके। ये देख के हमें तो सियाप सूंघ गयो और झट सीना वह मैरिज होम में थे हड़ुक चुल्लू बन के निकस आए और बाहर नल पर आए के रूमाल भी हो के सूट पे थे बिन धब्बन को छुड़ाए भी लगे। भैया धब्बा तो न छूटे पर हम जोकर से लगे भी लगे। अब का भयो हमको लहु शंका की इच्छा भई सोगारी बढ़ के ठाड़े थे लहु शंका करवे लगे। इतेक में जाने कहाँ थे घरात की बैयरवानी को टोल आमद दीसो सोई हमारे हमने बैठवे को उपक्रम कियो सोई हमारी पेंट चिर कर गई। अब तो हमारो मोड़ो देखवे लायक हो बढ़िया सूट को झमोकादार देख के हम जनमा से माऊँ ऐसे भाजे जैसे पुलिस को देख के चोर और मुँह बरात की बसऊ ठाड़ी सो लपक के वहाँ में जाए बैठे और ऐसे बैठे रहे जैसे नई नवेली दुल्हन सिमटी सकुची सी बैठी रहे। मित्र के गांव आमते ही हमने कुर्ता पायजामा धारण कियो और मित्र से आज्ञा लई और अपनों सो मोहो लेके अपने गांव की गैल नापी सो भैयाओ हम तो बड़े पछताए बरात करके।
1: अभी आपने सुना ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में कोमल प्रथा शर्मा से हास्य वार्ता बड़े पछताए बरात में जाएंगे। इसी के साथ आज का ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार FIR दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में SIT की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। SIT मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे

0: लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए, इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम शाम सुहानी में।

जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। मोबाइल नंबर एक बार फिर से 9412225575। करिए व्हाट्सएप, सुनिए अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा।

कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुबेहा, नेवादा जिला, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का संदेश। दमणगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भगवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे और कुमारी सनका देठे पाटिल का संदेश। बर्फगांव नादुरा से शिवाजी उगले और राहुल उगले भी जुड़े हैं कार्यक्रम में और अपने संदेश के साथ में। पुणे जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत का संदेश मिला। एक और संदेश के साथ में गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से है सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, समर्थ देशमुख, सानवी और हर्षता देशमुख का संदेश मिला। कृष्णा टॉकीज से ये, जी हाँ, किशोर नगर अमरावती से ये संदेश। हीरामन शेंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोंडवानी का संदेश मिला। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ से, राजस्थान से ये सभी सुधी श्रोता कार्यक्रम में। हर्षित, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी बागरी, बाई बागरी और प्रभुदाल बागरी का संदेश है। और आप जुड़े कार्यक्रम में। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शरफराज, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और ये अब्बासी परिवार का संदेश मिला। कार्यक्रम में जुड़े हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके परिवारिक जन। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू भी जुड़े कार्यक्रम में। नारायण आगे, कमल, दिव्या और जय आगे जुड़े भरभट बकाल बुलढाणा के से। आप जुड़े कार्यक्रम में। बुराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ वाघ पाटिल, अमोघ वाघ, कृष्णा कुड़िया, कृष्णाली और अशोक देशमुख। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान भी जुड़े हैं कार्यक्रम और आपका भी संदेश मिला कार्यक्रम में। कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आइए सुनिए सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म वास्तव से ये गीत। आवाजें इस गीत में सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में गोवर्धन रोड विंटेज कॉलोनी मथुरा से हेमलता का संदेश मिला। आप भी जुड़े कार्यक्रम में हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोखड़े, अंबेडकर चौकी वाकुड़ी से हैं उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े का संदेश। और आप जुड़े कार्यक्रम में

अब भी जुड़े कार्यक्रम में गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा, रामानुज, कृष्णा, राधिका, पवन, भरत, नमन और इनके परिवारीजन, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, जशोदा, सूरज, शिवानी, कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से है सोनिया, अजीत, शिवांश और इनके परिवारीजन। व्हाट्सएप संदेश के साथ जुड़े हैं श्रोता साथी, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी, अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजाल का, रामगढ़ कैंट से है निप्पी साहनी और सुनीता साहनी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी जुड़े हैं कार्यक्रम शाम सुहानी में और आप भी जुड़े कार्यक्रम में, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश पुरोहित, शिवकुमार शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, हंसिका, पायल कुमारी और अंकिता जोशी। एक और संदेश के साथ में जुड़े मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और विद्या कुमारी, पापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, जिक्रा और बेबी आयशा खत्री, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा, पूजा परिहार जुड़े हैं कार्यक्रम में संदेश के साथ। कार्यक्रम में प्रकाश जैन लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन का संदेश मिला, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से है, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत मुरापुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्ण और पीहू स्वर्णकार, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव का संदेश मिला, राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षरा रुद्रा और रामेकर परिवार जुड़ा है कार्यक्रम में, एडवोकेट खड़क सिंह छोकर का संदेश मिला मथुरा से, आप जुड़े राजू लवानिया खंदौली आगरा से, चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा सिहुरा से,

शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से, संदेश के साथ में सांगली महाराष्ट्र से हरमन शिंदे, संगीता शिंदे और ऋषिकेश और वसुंधरा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता साथी, पुराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ बाग पाटिल, अमोघ बाग कुड़िया और अशोक देशमुख, एक और संदेश के साथ में रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से संदेश भेजते हैं, उत्तम कुमार भगत श्वेता किसु अर्णव और सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से मैसेज के साथ में, धांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे संदीप

धारणी दादरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण भाटिया, संदीप भाटिया और अमूल्य भाटिया भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया का संदेश मिला। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज और असद अरहम। एक और संदेश के साथ में छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन का संदेश मिला। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन। आइए सुने श्रोता साथियों की पसंद पर तेरी मेहरबानी है इस फिल्म से ये गीत। आवाज इस गीत में शब्बीर कुमार की, बोल एसएच बिहारी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

अभी आपने सुना शब्बीर कुमार को फिल्म तेरी मेहरबानियां में। लेते हैं श्रोता साथियों के अगले व्हाट्सएप संदेश।

आप जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में गांव डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत का ये संदेश और अगले संदेश के साथ में है आप जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकस्टो, रोजी डिकस्टो, पॉल डिकस्टो और विलिस डिकस्टो का ये संदेश मिला। कार्यक्रम में है आप भी जुड़े कार्यक्रम में। संदेश में लोकेश जोशी, आकाश पुरोहित, शिव कुमार, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी, पायल और अंकिता जोशी भाटापारे छत्तीसगढ़ से, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमना यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव का संदेश मिला। संदेश के साथ में है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खडवा से श्रोता साथी। आपने संदेश भेजा अब्दुल गफार डागर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, सोहन जोशी और पायल जोशी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। सोहन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरु सिंह, शुभदीप और गुरलाल और विराज सब श्रोता साथी लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से संदेश भेजते हैं। मुंबई अड़ बढ़ जात्या शमसुल खान, अनुराज बिनारा और संदेश भी लिखा है उन्होंने अपने संदेश में, हरियाली बचाओ, धरती को सजाओ, यही प्रकृति का सच्चा सम्मान है। जी हाँ, बहुत सुंदर संदेश कार्यक्रम में भेजा श्रोता साथियों ने। संदेश के साथ में पिपरिया से कमल कुमार गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल पिया, दिशानी और निमित अहूजा हमारे सुधी श्रोता, रीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्यप्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह का ये संदेश मिला। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से है वसंत कुमार सिन्हा, रेखा पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश, वसंत लाव का संदेश मिला है। मैसेज के साथ में बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाटा कार्यक्रम में, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा रामेकर परिवार राहगांव कैंप अमरावती से नियमित श्रोता, अकोला महाराष्ट्र से संतोष कुमार बाग, संध्या और परिवार जुड़ा। आई सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म मेरे जीवन साथी से ये गीत आवाज किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

जी हाँ, लेते हैं व्हाट्सएप संदेश श्रोता साथियों के, आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार और हसनैन पवार का संदेश मिला। मंसूरी रोड रेडियो लिसनर क्लब से हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शुभिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी कार्यक्रम में जुड़े श्रोता साथी। और आप जुड़े कार्यक्रम में खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कुवेल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का का संदेश मिला। आप जुड़े गांव रजौनी, जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय बानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांशु और बघेल परवार। आप जुड़े कार्यक्रम में कानगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवलगा, विष्णुवर्धन विघ्नेश, करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से। कार्यक्रम में संदेश के साथ में कलन और हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण और नितिन और मयंक शर्मा का संदेश मिला। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू कार्यक्रम में ये संदेश हमको भेजा, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। संध्या और डीकेश साहू भी जुड़े कार्यक्रम में। संदेश के साथ में गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, प्रविला बंछोर, पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रोता साथी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता सुनीता, आरजू हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, संजीव बंटी और ये परिवार जुड़ा कार्यक्रम में। और आप जुड़े लोगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरु नूर सिंह, गुरलाल और अविराज। कलनौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा जुड़े कार्यक्रम में। आइए एक और संदेश कल्याण

मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले का, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, सईद भाई, सुफियान अनस, आयशा, अल्फिया और सदाफ हसनैन, ये सभी पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से संदेश भेजते हैं। वड़िंगखेड़ा से है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। संदेश के साथ में छन्नूलाल शिवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता शिवास का संदेश मिला। अंजू, रजंस, हेमंत, नामदेव, धर्मदास, वागवानी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से है विनोदपुरी, वीपीपुरी, रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम और सुनील पाठक, बीकेपुरी, विनोदपुरी, ये सभी श्रोता साथी जुड़े कार्यक्रम में। एक और संदेश के साथ में श्रोता साथी हैं शेरवानी स्कूल गंजुड़ावारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकांत रेवाड़ भी जुड़े कार्यक्रम में। हुकुम करमकर बेड़ी मध्य प्रदेश से हार्दिक, प्राची और तनिया करमकर का संदेश मिला कार्यक्रम में। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू भी जुड़े आज कार्यक्रम श्याम सुहानी में। फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से है जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसरीर, बानुबी और बादशाह ये मुलानी परिवार का संदेश। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का भी संदेश मिला। आज के श्याम सुहानी कार्यक्रम में श्रोता साथी जुड़े राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव हरमन, ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से श्रोता साथी। कल्याण मुंबई से किशोर, सुजाता, प्रतीक हिवराले का मैसेज। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई और गायकवाड़ परिवार इनका। बागपत से ममता डिगिया, कुणाल ढींगिया। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम श्याम सुहानी FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में ये गीत, फिल्म संगीत क्रम में, फिल्म शोले से ये गीत, आवाज़ है इस गीत में। राहुल देव वर्मन आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत राहुल देव वर्मन का, और स्वरबद्ध भी राहुल देव वर्मन के स्वर में।

फिल्म शोले में अभी आपने सुना राहुल देव वर्मन को, और आइए सुनते हैं फिल्म हिफाजत से ये गीत

Ele.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिफाजत से, ये गीत राहुल देव वर्मन और साथियों के स्वर में स्वरबद्ध। इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया हमने फिल्म सत्ते पे सत्ता से। आवाजें किशोर कुमार, राहुल देव वर्मन और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार, राहुल देव वर्मन और साथियों के स्वर में फिल्म सत्ते पे सत्ता, फिल्म से ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समय स्वर में देशगान, और लीजिए सुनते हैं फिल्म लुका छिपी के गीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं

मीका सिंह, सुरंदा शर्मा और निकिता गांधी के स्वर में फिल्म लुका छिपी से अभी आपने सुना ये गीत। और आइए सुनते हैं इसी कार्यक्रम का अगला गीत तुलसी कुमार के स्वर में।

तुलसी कुमार और साथियों को सुना अभी आपने फिल्म लुका छिपी में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुनते हैं कार्यक्रम का गीत अखिल ध्वनि भंसाली और बैरागु पाराशर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे अखिल धनु भानुशाली और भृगु पाराशर को फिल्म लुका छिपी में, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09, जिसे हम जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल

0: ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और

0: ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम नवरंग में।

कार्यक्रम नवरंग में सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनुराग पांडे। शुरू करते हैं आज का नवरंग कार्यक्रम।

कार्यक्रम नवरंग में जुड़े हैं सुधीर श्रोता व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। जी हाँ, आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में, सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करें व्हाट्सएप 9412225575 पर 9412225575। कार्यक्रम में जुड़े हैं सुधीर श्रोता व्हाट्सएप संदेश के साथ में चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदू और डॉक्टर सुनील। एक और संदेश के साथ में है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री और अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलुफर फातिमा। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मजलू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और विद्या सुरलकर का संदेश प्राप्त हुआ। आप भी जुड़े कार्यक्रम में, गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी और हर्षता देशमुख, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल, अविराज हैं। गांव लोगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब के सुधी श्रोता, बालकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, रजमत वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा है पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर के सुधी श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार कार्यक्रम में। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का संदेश। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आराध्या सुरलकर। नेहरू चेक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी, सिया जाधव का संदेश मिला नवरंग कार्यक्रम में। सोपान ताइड़े, नारायण इंगले, आशीष मुहर

कर मलकापुर महाराष्ट्र से, नलेश्वर नगर नरविल से हैं, सुदीश श्रोता, पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल, गणेश अविकार्ड श्रीरामपुर से, डी अशोक कुमार, अविका सानू और अर्चना, अजय सोनवणे, करिश्मा अविका और साहिशा सोनवणे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई मेहरा जहां आराज नगर लक्सर हरिद्वार के, सुदीश होता है नवरंग कार्यक्रम में, और कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका पूनावली पुणे से, अजय सोनवे, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवणे, राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र डूडी फरासी जिला हरियाणा के, सुदीश होता, करणवीर हाउस बुचो कैंजिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, कुलदीप और दमन अभिजोत। आइए सुने सुदीश श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।

आप भी जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़, कमाल सहानी, पिंगावाला चौक गोरिया, जालंधर के सुधीश होता। जी हाँ, अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक को फूल और कांटे फिल्म से लिया था ये गीत। और नवरंग कार्यक्रम में एक बार फिर से सुधी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में।

मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश मिला। इस गीत को सुनना चाहा था धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे ने। नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनसुया जाधव, पवन राजे जाधव भी जुड़े कार्यक्रम में। छत्रपति संभाजी नगर से है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। एक और संदेश के साथ में है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकर, रतनमाला और आरती कुमारी, ओम कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप, आरजू गुड्डू, पटेल नगर मलोट से कुमार हिड़ा, सहारनपुर से है सैयद मसूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब, कल्याण मुंबई से किशोर एवराले, सुजाता एवराले और प्रतीक एवराले का संदेश मिला। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिज्योत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रणता सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश और टुक टुक गवाणकर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि सुरेशे, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से है मनोज नामदेव, मयंक खुशबू और ममता नामदेव, रेखा नामदेव, छत्तीसगढ़ से है देवशंकर तामुरिया, डोंडी लोहारा से अजय देव तमुरिया, तुषार देव तमुरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा और मास्टर अलकबीर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा जुड़े, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम राम, ये सभी श्रोता साथी हैं, हीरा वाली फजिल का पंजाब से, आर्यनगर कोका भिलाई से है उत्तम सिंह जंगेल, मूरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदाज गुमला झारखंड के सुधीर श्रोता, और आप भी जुड़े कार्यक्रम में नवरंग कार्यक्रम में यादराम, वीरेंद्र, भोली, मनीष, काना, कोमल, गुड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी, ओमवती, मनोज कुमार, गौरी।

लोधीराम भगत जी, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र गांव उस पार से है यादराम वीरेंद्र, राजो देवी और फरमाइश इन्हें हम तक भेजी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। एक और मैसेज के साथ में कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज, उत्तम कुमार बघेल, लखमनी बघेल, साहिल भारती, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ के सुधी श्रोता, पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी और सौरभ शर्मा, साइना शर्मा का संदेश मिला। आइए सुने नवरंग कार्यक्रम में अगली पेशकश इन सुधी श्रोता साथियों की।

गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म पगला कहीं का। जी हाँ, इस फिल्म से आवाज़ दे रहे थे इस गीत को मोहम्मद रफ़ी। और एक बार फिर से लेते हैं सुधी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश।

आप जुड़े संदेश के साथ में नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा के सुधी श्रोता और आप जुड़े कार्यक्रम में गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह चंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगले संदेश के साथ में सुधी श्रोता व्हाट्सएप संदेश में राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, गौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली के सुधी श्रोता हैं आप हैं, किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साइराज, विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीट शहर के सुधी श्रोता और शेरवानी स्कूल गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया, महेंद्र मोदी मैनेजिंग ओल्ड लिसनर ग्रुप ऑफ इंडिया से ये है सुधी श्रोता, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का भी संदेश मिला। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से है मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू और हसनैन पवार। नर्मदा मंगलबेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन कार्यक्रम में एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला से ये सुधी श्रोता। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जुड़े। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, रिमोनी और ऋतिक, बलवीर सिंह ये सभी जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के सुधी श्रोता। तरफ दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले, शेरी बनेर अकुला से अरुणा दामोदर, आदित्य दामोदर और बलदेव दामोदर। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन और उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल कमर्राही, सहावर रोड गई जुड़वावारा से। अगले संदेश के साथ में सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा और हीरामण शेंडे भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। संदेश के साथ में गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा जुड़े कार्यक्रम में। पीठ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुबलू, पीवी कुलथे। तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़सवारा, सचिन कड़वासरा, सचिव संतीश और योगेश। ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, नगला राणा सिहुरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति, राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से, अशोक जसवत आनंदलोक कॉलोनी मथुरा से, सुधीर चौधरी आनंदलोक कॉलोनी से। अगले संदेश के साथ में राजू लवानिया खंदौली आगरा के सुधीर श्रोता। मैसेज के साथ में है आप शिरकत करते विनायक शेंडे, मंगला बेन, शिवम, संजीव डाबेराव अकोट से, प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया का संदेश मिला। गोविंदपुर सी

सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार रिंकी, मोहम्मद यासीन अनजान, साहिबा नवाज, हसन बाबू है तो मिफ्रा बेबी चाह, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से सुधी श्रोता। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर इस गीत को लिया फिल्म सरगम से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप जुड़े कार्यक्रम में। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा अश्विनी और विपुल कांबड़े, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, ये सभी हीरा वाली फलजिका पंजाब से संदेश भेजते हैं। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू सजदा और हिना कौसर, मौला अलवाइयान, शेरकोट जिला बिजनौर की सुधी श्रोता हैं।

मोहल्ला अलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर की सुधी श्रोता हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकस्टो, पॉल डिकस्टो, रोजी डिकस्टो और विलिस डिकस्टो इस कार्यक्रम नवरंग में, गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा, राधिका प्रभा और मास्टर अल कबीर। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, चित्रा कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्ण और पीहू स्वर्णकार। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रिश्ता। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। सिंगार तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से है राधेश श्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी और कामेश यादव, भारती यादव। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द सिंह, राहुल, गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप येमेकर, बेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु छोटू और एसके पप्पी खुराना। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सज्जा हिना कौसर, मौला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना, रेखा और भारती नामदेव हैं। पूर्वी रूही, अनु, अनन्या, आदर्श, शक्ति, भक्ति, लवकुश, दीपक नामदेव ये सभी सुधी श्रोता कार्यक्रम में संदेश भेजते हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से। समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे और निशांत जगताप। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना। सदवामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत और सागर। नासिक से विशाल गवली, सोनाली, समर्पण, भक्ति गवली। कुमार गली कोलेगांव से पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग कुमार। जिला बुलढाणा से विजय शेगोकार, रेणुका शेगोकार, ऋषिकेश और जयशी शेगोकार। आइए सुनते हैं सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत फिल्म शान से। आवाज इस गीत में आशा भोसले की।

अभी आपने सुना आशा भोसले को फिल्म शान में, और आइए सुनते हैं फिल्म कच्चे धागे से ये गीत। इस गीत को सुना चाहा राधा विंटेज कॉलोनी से हेमलता ने, और मैसेज हम तक भेजा रमेशन चौहान ने जोधपुर राजस्थान से। अगले सुधी श्रोता रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और विशाल महोबिया।

विशाल विवेक सोनू मोनू रानू ईशु बाबा सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू खंडवा मध्य प्रदेश से संदेश के साथ में आप भी जुड़े कार्यक्रम में नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति किरण ठाकुर शशि माला जी एक और संदेश के साथ में है कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार डाबी राधा डाबी विक्रम अर्चना राक्षी डाबी सिंहधरी जिला बलोतरा राजस्थान के सुधीर श्रोता वडिंगा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग लकी तनिया कार्यक्रम में मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब से हैं बाजार रोड मुंगीसपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरू निशा शबिस्ता मोहन मत नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी और कृष्ण की नगरी मथुरा से सुधी श्रोता हैं सबा अंसारी शकील अंसारी हिना अंसारी बुशरा अंसारी गुलिस्ता रानी नंदिनी और अंजलि

रेशमा और शेरा, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, गीत संगीत जयदेव का था। और आइए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत उषा खन्ना का, फिल्म साजन की सहेली, इस फिल्म से ये नगमा। आवाज़ दे रहे हैं गीत को मोहम्मद रफ़ी।

गीत मजरू सुल्तानपुरी का, और अभी आपने सुना संगीत उषा खन्ना का। आवाज़ दे रहे थे गीत को मोहम्मद रफ़ी। फिल्म साजन की सहेली, जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

संगीत जयदेव का, स्वर लता मंगेशकर का, तुम्हारे लिए। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। और आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह को फिल्म चलते चलते में।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह को फिल्म चलते चलते में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं भगवान दास शर्मा। आप सुनेंगे इनसे संतूर वादन, जो राग अमोगी कानड़ा में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं आपके साथ तोताराम शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज के कलाकार थे भगवान दास शर्मा। आपने सुना इनके द्वारा संतूर पर बजाया राग अमोगी कानड़ा। तबले पर संगत कर रहे थे आपके साथ तोताराम शर्मा। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश दुनिया की खबरें हिंदी समाचार में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे कुछ ही पलों में।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा